एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

0: एमओ के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थलसेना, वायुसेना और नौसेना का 4था युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन। हम मनुष्यों का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि दूसरों की गलतियां हम जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों पर नजर डालने से हम बचते हैं। कई बार हम स्वयं वही भूले करते हैं जिनके लिए दूसरों को हम अक्सर उपदेश देते हैं। यही दोहरा व्यवहार मन की शांति छीन लेता है। आध्यात्मिकता हमें दूसरों का न्याय करना नहीं बल्कि स्वयं को सुधारना सिखाती है। यदि हम हर दिन कुछ क्षण अपने विचारों, वाणी और कर्मों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें तो किसी और की आलोचना करने के लिए हमें समय ही नहीं मिलेगा। हमें हमेशा ये याद रखना है, श्रेष्ठ वह नहीं जो दुनिया के सामने स्वयं को सही साबित करता रहे, बल्कि वह है जो अपनी भूल स्वीकार करके उन्हें सुधारने का साहस रखता है। आत्मचिंतन ही आत्मविकास का पहला कदम है और यही सच्चे जीवन की पहचान भी है। चिंतन के बाद आइए शुरुआत करें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की इस गणेश भजन के साथ।

कहते हैं जिस सुबह की शुरुआत शिव स्मरण से होती है, उस दिन मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास स्वतः जाग उठता है। सावन के इस पावन अवसर पर आइए, भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाएं इस मधुर भजन के साथ।

माँ जगदम्बा की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सर विनम्रता से झुकता है वही माँ की कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। माता रानी के द्वार में ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, वहाँ केवल सच्ची आस्था और निर्मल हृदय का ही महत्व है। तो आइए माँ की आराधना करें और इसी विश्वास के साथ माँ के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें।

सावन का पावन समय हमें शिव के उस संदेश से जोड़ता है कि मन को निर्मल रखिए, कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए। जहां विश्वास अधिक होता है, वहां महादेव की कृपा स्वयं मार्ग प्रशस्त करती है।

श्रोताओ, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6:40 हुए हैं। आप सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषादराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए। वहां स्नान कर विधिपूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: अभी आपने सुना मानस गान का भाग 167। आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 7:10 पर रोजाना आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभप्याग सुनिएगा 7:40 पर। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर आज फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। कानून की बात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर, जिसे आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। श्रोताओं, आपकी ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि आज 9:00 आप सुनेंगे। 9:00 से 10:00 तक इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे और इसी दौरान 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। दस बजे प्रसारित करेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवा, पहाड़ों की सुर, हिमाचली लोकगीतों को यह कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 पर। 11:00 आकाशवाणी शिमला से एक बार फिर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन। 11:05 पर आज आपको सुनवाया जाएगा पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसका प्रसारण किया जाएगा 11:30 पर। दोपहर 12:00 का समय रहता है कार्यक्रम सैनिकों के लिए के प्रसारण का। 12:30 पर बहनें अपना कार्यक्रम सुनो सखी सुनेंगी और आज का ये कार्यक्रम सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित रहेगा। एक बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का, जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। और 1:10 से शाम 5:00 तक इन कार्यक्रमों का लुत्फ आप उठाएंगे। और इसी बीच दोपहर 3:00 प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5:00 समाचार सुने जा सकते हैं, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 5:10 पर आज कुछ गैर फिल्मी भजन सुनवाए जाएंगे। 5:30 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युवा मंच में आज बात होगी नई उड़ान के अंतर्गत। 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे। 6:05 पर सुनेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ मौजा गराइंदियां। ये कार्यक्रम शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम खेतीबाड़ी लेकर हाजिर होंगे शाम 7:10 पर। 7:45 पर एक बार फिर से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। 8:15 पर कार्यक्रम सबरस में लुत्फ उठाएगा मिले जुले गीतों का। देशभक्ति गीत 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे संगीतकार जयदेव द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत, गूंज पहाड़ों की। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीत। 10:00 मानसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही पर आधारित रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी। उसके बाद सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। सभा के अंत में समाचार सुने जा सकते हैं। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारी केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः, मानसिक रूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमंत्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः, अथ स्वस्थ जीवन चर्यां च अंगीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1,00,000 युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री डॉ. मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादकद्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रिय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉ. मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्रनिर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्य प्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणना पट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। 11 स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्यसमारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां 4th अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा. हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी. नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा. आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स.
4: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and the National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu will begin a 3-day visit to Odisha today. During her visit, the President will participate in a series of educational, cultural and official engagements in Cuttack, Bhubaneswar, Brahmapur and Taptapani in Ganjam district. The President is scheduled to inaugurate Jagatguru Kripalu University at Cuttack today. Tomorrow she will travel to southern Odisha to offer prayers at the Ma Khanduni Devi temple near Taptapani before attending other official programs. All arrangements are in place for the counting of votes today for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 this morning. Postal ballots will be counted first, followed by the counting of votes recorded in electronic voting machines from 8:30 a.m. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all the 3 states. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than early expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports, according to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee MPC report released on Saturday. The growth estimates marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. U.S. President Donald Trump has said the negotiations with Iran, expected to take place through intermediaries, are scheduled to take place today. Speaking to reporters on board Air Force One, Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz, while asserting that an accord would be established concerning the denuclearization of Iran. In Pakistan, at least 14 people, including 5 security men, were killed and over a dozen injured in a suicide attack on a police station during a peace rally in Khyber Pakhtunkhwa province yesterday. The explosion occurred when the Swat peace rally was in progress right across the police station in Kabal town in the Swat district. After 11 days of intense competitions, Glasgow Commonwealth Games concluded with a flag and baton handed over to India, host of the centenary edition, in a glittering ceremony at Glasgow today. The 2030 Games will be held in Ahmedabad, and the Scotland officials handed over the CWG flag and baton to the Indian representatives, Olympic gold medalist Neeraj Chopra, Indian Olympic Association President P.T. Usha, and Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Odisha, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Jharkhand till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है. सुबह के 7:10 हुए हैं. अब सुनिए कार्यक्रम सुबह सुहानी.

0: सुबह सुहानी।
1: एक और नई सुहानी सी, खूबसूरत सी और बहुत सी उम्मीदों से भरी हुई इस प्यारी सी सुबह में सभी श्रोताओं का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम सुबह सुहानी में। एक बार फिर लेकर हाजिर है एक नए सुविचार, कुछ नई जानकारियों और मनोरंजन का ये सुंदर सा संगम कार्यक्रम सुबह सुहानी में। बात सबसे पहले आज के सुविचार की। वाणी वह आईना है जिसमें इंसान के संस्कार साफ दिखाई देते हैं। जी हाँ श्रोताओं, कहते हैं किसी इंसान को समझने के लिए उससे बहुत लंबी मुलाकात की जरूरत नहीं होती, उसके कुछ कहे हुए शब्द बहुत कुछ कह देते हैं। हमारी वाणी में ही हमारी परवरिश, हमारे संस्कार और दूसरों के प्रति हमारा सम्मान झलकता है। इसीलिए बोलने से पहले शब्दों का चुनाव जरूर कीजिए, क्योंकि ये शब्दावली ही अक्सर हमारी पहचान बन जाती है।

सुविचार के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आज बहुत कुछ आपके लिए है। बात करेंगे आज के इतिहास की और साथ ही आपके साथ बात करेंगे जो आज विशेष दिन मनाया जा रहा है। उसके बाद आपके साथ मुख्य आज की खबरें साझा करेंगे, मौसम की जानकारी भी फिर आपको देंगे और इस तरह से कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ेगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है गीत संगीत का, तो श्रोताओं को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

गीत के बाद एक बार फिर सभी श्रोताओं का स्वागत कार्यक्रम सुबह सुहानी में। श्रोताओं, वक्त कभी रुकता नहीं कुछ, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो समय की रफ्तार में भी अपनी एक अलग पहचान छोड़ जाती हैं। तो आइए चलते हैं इतिहास की उन गलियों में जहां 3 अगस्त की तारीख पर कई यादगार पल दर्ज हैं। बात सबसे पहले 3 अगस्त की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की। बात करें साल 1492 की, तो महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के उद्देश्य से स्पेन से अपनी पहली समुद्री यात्रा पर आज के दिन रवाना हुए थे। इसी यात्रा में वे अमेरिका महाद्वीप पहुंचे। साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिससे यूरोप में युद्ध और तेज हो गया। आज के दिन साल 1949 में BAA और NBL के विलय से दुनिया की प्रसिद्ध बास्केटबॉल लीग NBA का गठन हुआ। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी USS नॉटिलस उत्तरी ध्रुव के नीचे से आज के दिन सफलतापूर्वक गुजरने वाला दुनिया का पहला जहाज बनी साल 1958 में। 3 अगस्त साल 2004 को नासा ने मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, जिससे इतिहास रचते हुए बुध ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यान का गौरव हासिल किया और इस रहस्यमय ग्रह के बारे में कई अहम जानकारियां दुनिया तक पहुंचाई। इसे फ्लोरिडा के कैप कानवेरल एयरफोर्स स्टेशन से Delta II रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। बात श्रोताओं अब उन खास हस्तियों की जिनके जन्म हुए आज के दिन, यानी 3 अगस्त के दिन। साल 1886 में जन्म हुआ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को नई पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज के दिन उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, भारतीय संस्कृति, नारी गरिमा और मानवीय मूल्यों की गहरी झलक मिलती है। भारत भारती, साकेत और यशोधरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनकी लेखनी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उस दौर में जनमानस में देशभक्ति की भावना जगाई। उनकी जयंती पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को हम शत शत नमन करते हैं। और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म जयंती है हिंदी सिनेमा के अमर गीतकार और उर्दू के मशहूर शायर शकील बदायूनी की। आज ही के दिन साल 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में इनका जन्म हुआ। उन्होंने अपने गीतों में प्रेम, संवेदना, अध्यात्म और देशभक्ति को बेहद ही खूबसूरती से पिरोया। संगीतकार नौशाद के साथ उनकी जोड़ी को बहुत सराहा गया और उन्होंने चौधरी का चांद, मन तड़पत, हरिदर्शन को आज प्यार किया तो डरना क्या जैसे कालजयी गीत हिंदी सिनेमा जगत को दिए और आज भी ये गीत लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्हीं का लिखा हुआ गीत अब कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। नौशाद का संगीत पद ये किया गीत है। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है। संघर्ष फिल्म का ये गीत है, सुनिए।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज के दिन जन्मी मशहूर हस्तियों के बारे में। श्रोता, आज के दिन साल 1919 में जन्म हुआ है भारतीय संगीतकार और बाल अभिनेता रहे जयदेव का। भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध खलनायिकाओं में से एक शशिकला, उनका जन्म साल 1933 में 3 अगस्त के दिन हुआ। 3 अगस्त साल 1936 में जन्म हुआ भारत के सबसे महान और सबसे प्रतिभाशाली शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा का। और श्रोताओं, इनको इन्हें कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2020 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। छन्नूलाल मिश्रा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में शीर्ष ग्रेड कलाकार भी रहे हैं। साल 1941 की बात करें तो आज ही के दिन यानी 3 अगस्त के दिन जन्म हुआ बाबा हरभजन सिंह का। ये भारतीय सेना के एक ऐसे जांबाज सैनिक थे जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी मृत्यु के बाद आज भी वो देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं। इस सिपाही को अब लोग कैप्टन बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारते हैं। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री, इनका जन्म साल 1984 में 3 अगस्त के दिन हुआ और ये भारतीय फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। बात करते हैं श्रोताओं उन हस्तियों की जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को रुखसत किया। साल 1982 में आज हमारे बीच आज के दिन नहीं रहे त्रिभुवन नारायण सिंह, स्वतंत्रता सेनानी थे ये और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। सीएम पुनाचा, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ, इनका निधन हुआ 3 अगस्त साल 1990 को। साल 1993 में निधन हुआ भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का। विश्वविख्यात फ्रांसीसी फोटोग्राफर हेनरी कॉर्तिए ब्रोंसो का आज ही के दिन निधन हुआ साल 2004 में। उन्हें आधुनिक फोटो जर्नलिज्म का अग्रदूत माना जाता है। ये थी जानकारी आज के इतिहास के बारे में। और श्रोताओं, इतिहास की हमने बात की और अतीत की गलियों में हम गए। अब अतीत की गलियों से निकलकर एक बार वक्त है फिर से वर्तमान की रौनक में लौटने का, क्योंकि सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब वक्त है एक और प्यारे से गीत का।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओ, हम अक्सर कहते हैं कि जिंदगी अनमोल है, लेकिन इसकी असली कीमत तब समझ आती है जब किसी की धड़कन धीमी पड़ने लगे और उसे बचाने की उम्मीद किसी दूसरे इंसान की उदारता से जुड़ जाए। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में कई चमत्कार किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ चमत्कारों को पूरा करने का काम इंसानियत करती है। इंसानियत के इसी जज्बे और अंगदान के महत्व को रेखांकित करता है आज यानी 3 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस। ये दिन भारत में हुए पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण की ऐतिहासिक उपलब्धि को समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना, अंगदाताओं और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और ये संदेश देना है कि जीवन का सबसे अनमोल उपहार किसी को नई जिंदगी देना है। किसी व्यक्ति का लिया गया अंगदान का निर्णय कई परिवारों की खुशियां लौटा सकता है। तो आइए हम सब भी कोशिश करें इस नेक सोच को आगे बढ़ाने की और समाज में जागरूकता फैलाने की। कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अब एक बार फिर वक्त है गीत संगीत का।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम में अब वक्त आज की खबरों का। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने नई दिल्ली में आजादी के 79 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति और नशा मुक्त भारत का संदेश देना था। नेट पीजी 2026 परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अधिक परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए हैं। केरल में लगातार भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत बचाव कार्य जारी हैं। बात करें खेल समाचारों की तो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 का समापन जो है वो भव्य रूप से हो चुका है और भारत ने 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और बैटन भारत को सौंपा गया। अब 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत करेगा। क्रिकेट में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण श्रीलंका के विरुद्ध आगामी टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो सकते हैं। बैडमिंटन में भारत की 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में अपना पहला वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार सफलता हासिल की। जानते हैं अब मौसम का हाल। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बात करें हिमाचल के मौसम की तो हिमाचल प्रदेश के आज अधिकांश

स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने भूस्खलन, अचानक बाढ़ और नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। धर्मशाला और उसके आसपास के मौसम की बात करें तो धर्मशाला, मैकलोडगंज, पालमपुर, कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहने, रुक रुक कर बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें। जी, कार्यक्रम सुबह सुहानी में जानकारियां आज इतनी ही, और अब चलते चलते श्रोताओं को एक गीत और सुनवा रहे हैं।

0: जाता है।
1: श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
2: सुबह सुहानी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:40 हुए हैं। अब वक्त है हिमाचली लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ भ्याग का।

कार्यक्रम शोपियाग में सभी श्रोताओं का स्वागत और श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं दयालुराम और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ। सुनिए ये शिवलोक भजन।

ये लोक भजन अभी आपने सुना। इस लोक भजन के बाद कार्यक्रम में अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं। इसे गाया है अभिलाषा शर्मा ने।

0: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ भ्याग। अगला लोकगीत इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
2: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
1: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
0: कार्यक्रम शुभ प्याग की अगली प्रस्तुति ये लोकगीत जिसे गाया है सुरेंद्र मन्हास और निर्भय सलाथिया ने।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है कुछ ही देर में पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधोनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में AI की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस 100 वीक लॉन्ग नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान सेज विकसित भारत रिक्वायर्स फिजिकली हेल्दी मेंटली रोबस्ट एंड हाईली कॉन्फिडेंट यंगर जनरेशन. Counting of votes begins for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
4: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
3: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
5: आकाशवाणी धर्मशाला से फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत रंग फिल्म से, आवाज एक बार फिर अलका याग्निक कुमार सानू की, शब्द रचना एक बार फिर है समीर की और नदीम श्रवण का ही संगीत है।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक, वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साजन का घर फिल्म से ये गीत अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों में। अभी आपने सुना, हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात, जिसे आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा।

0: सकते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों के विधिक सेवा प्रदान करने की योजना। श्री विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से भेंट कर रही हैं सपना ठाकुर। इसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन सकेंगे।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना विषय पर। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं विक्रांत कौंडल जी। आप अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी हैं। विक्रांत कौंडल जी, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: विक्रांत जी, जैसा कि आज का विषय है आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: जी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो व्यक्ति किसी भी आपदा से प्रभावित होता है उसको पर जो भी सहायता चाहिए
1: जी,
2: उस सहायता को पहुंचाने में जो भी कार्रवाई की जाती है वो उस तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ये इसका मेन उद्देश्य है
1: जी। इस योजना के अंतर्गत किन लोगों को लाभ प्राप्त होता है?
2: इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है जो कि किसी भी प्रकार की आपदा से ग्रसित है। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मैन मेड हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं का अगर हम जिक्र करें तो बाढ़, भूकंप, आगजनी, भूस्खलन आदि, और अगर हम मैनमेड आपदाओं का एग्जाम्पल लें तो जैसे कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाता है या फिर कहीं भी कोई भी ऐसी फैक्ट्री में कोई आग लग जाती है जिसमें हमारी प्रॉपर्टी और लोगों का नुकसान होता है, तो इस तरह के जो भी डिजास्टर होते हैं उसमें जो भी सेवाएं या सुविधाएं उस वक्त लोगों को एकदम से चाहिए होती हैं तो उन लोगों तक पहुंचना हमारा एक उद्देश्य होता है
1: जी। विक्रांत जी, विधिक सेवा प्राधिकरण क्या सहायता प्रदान करते हैं आमजन को?
2: ये विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में बता पाऊं
1: जी,
2: तो जैसे हम अगर भारत देश की बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है और हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, तो हमारे पास संविधान है और संविधान में हमारा एक आर्टिकल 39A है जो कि ये मैंडेट सरकारों को देता है कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए बनाएंगे जो कि उनको एक समान न्याय और फ्री लीगल एड की सुविधा उपलब्ध करा सके। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने सेंट्रल लेवल पे एक एक्ट को पास किया जिसको हम कहते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ये फोर्स में आया था 9 नवंबर 1995 को
1: जी।
2: तो इस एक्ट के अंदर ऐसे प्रावधान डाले गए हैं जिसमें कि ये जो लीगल सर्विसेज है इसको किस तरह से हमारे नागरिकों तक पहुंचाना है उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उसी में सेंट्रल लेवल में हमारा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक प्राधिकरण है और उसी तरह से हर स्टेट्स में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के नाम से प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार से जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काम कर रही हैं और सब डिविजनल लेवल पर तालुका लीगल सर्विसेज कमिटीज काम कर रही हैं। ये सब जो हैं ये एक साथ जुड़ी हुई होती हैं और नालसा की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन इनके द्वारा किया जाता है। आज जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं वो भी उन स्कीम्स में से एक ही स्कीम है
1: जी। विक्रांत जी, जैसे कि बात हो रही है विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना, आपदा के समय इस योजना को कैसे लागू किया जाता है?
2: आपदा की स्थिति में जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जहाँ जहाँ राहत शिविर लगे होते हैं वहाँ हम विधिक सहायता शिविर आयोजित करते हैं। इन शिविरों के माध्यम से हम वहाँ पर रह रहे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाते हैं और जो सरकार द्वारा उनको सहायता प्राप्त करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी सूचना उनको देते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी कार्यवाही करनी है, जैसे कुछ एप्लीकेशन लिखनी है या कहीं कोई ऑनलाइन अप्लाई करना है, उस सब के लिए हम उनका सहायता करते हैं
1: जी। क्या इस योजना के अंतर्गत कोई शुल्क देना पड़ता है?
2: नहीं, ये पूरी तरह से निशुल्क योजना है
1: जी। पीड़ित इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
2: जो भी पीड़ित व्यक्ति है, आपदा से प्रभावित व्यक्ति है, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हैं। ये जो प्राधिकरण है ये हर जिला में स्थापित है और हमारा एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है 15100, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राहत शिविरों में लगाए गए जो विधिक साक्षरता शिविर हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं और अपनी जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं।
1: विक्रांत जी, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस योजना का संचालन कौन करता है?
2: जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी सेंट्रल लेवल की जो प्राधिकरण है उसको हम शॉर्ट में नालसा कहते हैं, जो कि है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। उसी द्वारा ये सारी जो योजनाएं हैं इसका संचालन किया जाता है।
1: अगर कोई आपदा आ जाती है तो आपदा पीड़ितों को मुआवजा प्राप्त करने में कैसे सहायता दी जाती है?
2: विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को मुआवजा योजनाओं की जानकारी देते हैं, आवेदन भरने में सहायता करते हैं तथा आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं।
1: जी, तो क्या इस योजना के तहत केवल न्यायालयीन सहायता ही दी जाती है?
2: जी नहीं, इस योजना के तहत अगर कोई न्यायालय से बाहर भी कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी हम मेडिएशन, जिसको हम मध्यस्थता कहते हैं, उसके द्वारा सुलझाने में मदद की जाती है, या कॉन्सिलिएशन जिसको हम सुलह कहते हैं, उस द्वारा भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने में काम किया जाता है।
1: तो लोगों को जागरूक करने के लिए क्या इस योजना में कानूनी जागरूकता भी शामिल है?
2: जी हाँ, हम बहुत से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन करते हैं जिसमें कि अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है और उनको अधिकारों के बारे में बताया जाता है
1: ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और लाभ प्राप्त कर सकें। विक्रांत जी, और अब बात आती है कि इस योजना में स्वयं सेवकों की क्या भूमिका होती है, जो वॉलंटियर्स होते हैं?
2: जी, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है क्योंकि जो भी प्राधिकरण हमारा काम कर रहा है वो ग्रास रूट पर, हमारे जो ग्रास रूट में काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा ही लोगों तक पहुंच रहा है। हमने अपने इस स्कीम में पैरालीगल वॉलंटियर्स को नियुक्त किया हुआ है। उनको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है कि जब भी कभी डिजास्टर की स्थिति उत्पन्न कहीं भी होती है तो वो जो भी व्यक्ति है उसे, जो आपदा ग्रस्त हैं, उनके पास जाकर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हमारे प्राधिकरण तक पहुंचाएं। ये एक तरह से वो आपदा प्रभावित व्यक्तियों के बीच में और हमारे प्राधिकरण के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं।
1: और हेल्पलाइन के बारे में आपने बताया, फिर भी आपसे जानना चाहेंगे क्या सुविधा रहती है अगर एकदम से कोई आपदा आ जाती है और आमजन सहायता चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर क्या है और कैसे उनको डायल करना है, क्या करना है?
2: जी, हेल्पलाइन नंबर आप किसी भी लैंडलाइन या मोबाइल फोन से डायल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो है 15100। इसमें आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और वो आपको आगे की कार्रवाई का जरिया बताएंगे।
1: जी, और आपदा के बाद पुनर्वास में इस योजना की क्या भूमिका रहती है?
2: जब भी कहीं आपदा आती है तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन, जिसको हम पुनर्वास कहते हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे अभी हमने हिमाचल में ही देखा, कुल्लू, मंडी और कई ऐसे क्षेत्र थे जहां आपदा ने काफी लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, कई लोगों की जान माल का नुकसान हुआ, कईयों के पास तो जो घर थे वो भी बह गए और जो जमीन थी वो भी नहीं रही। ऐसी स्थिति में अब उनको जो सरकार द्वारा मुआवजा राहत राशि प्रदान की जा रही है उसको प्रदान करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया होता है। जैसे उनको अप्लाई करना होता है, कंसर्न्ड पटवारी से रिपोर्ट लेनी पड़ती है, तो उसके लिए आम एक गाँव में रहने वाले नागरिक को इतना पता नहीं होता है कि उसने कहाँ जाना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ से वो मिलेगा
1: जी।
2: तो उस तरह की सहायता के लिए जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं वो उनकी सहायता करते हैं, वो उनको फॉर्म भी मुहैया करवाते हैं, उनको भरने में भी मदद करते हैं और कंसर्न कार्यालय में जमा करवाने में भी मदद करते हैं। और जब ये सब चीजें हो भी जाती हैं और उनको पुनर्वास वो मिल भी जाता है, उसके बाद भी अगर कोई समस्या उनको आ रही होती है तब भी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।
1: कुंडल जी, जैसे कि हमारा एक विशेष वर्ग आता है, बच्चे और महिलाएं, तो बच्चों और महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान रहता है इस योजना के अंतर्गत?
2: जी, जैसे कहीं आपदा हो गई तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कई परिवार के जो मुखिया होते हैं, माता पिता होते हैं, वो काल का ग्रास बन जाते हैं, तो जो उनके बच्चे होते हैं उनको संभालने की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण देने में जो भी प्रोसीजर अपनाना पड़ता है वो जो हमारे अथॉरिटीज हैं वो उसमें सहयोग करती हैं। जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं वो इसकी जिम्मेदारी उठाती हैं और बच्चों को जहां भी सेफ रखना होता है वो वहां तक उनको पहुंचाया जाता है।
1: जी, और इस योजना की हम आज बात कर रहे हैं, क्या ये योजना सभी प्रकार की आपदाओं पर लागू होती है?
2: जी हाँ, यह योजना जैसे मैंने बताया था प्राकृतिक और मानव निर्मित हर प्रकार की आपदाओं पर लागू होती है।
1: जी, क्या प्रवासी श्रमिक भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं?
2: जी हाँ, आपदा से प्रभावित अगर कोई भी प्रवासी श्रमिक है तो उसको भी वही सहायता मिलेगी जो एक आम नागरिक को मिल रही है।
1: जी, और यदि दस्तावेज खो जाए तो क्या सहायता दी जाती है?
2: जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी को दस्तावेज बनाने के लिए, फिर से उसको अप्लाई करने के लिए सहयोग चाहिए, कोई फॉर्म भरना है या किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने में सहायता चाहिए, तो वो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और हमारी अथॉरिटीज उसमें काम करती हैं।
1: कुंडल जी, जैसे बात हो रही है आपदा योजना की, तो बीमा दावों में कैसे मदद की जाती है?
2: जैसे कहीं भी आपदा आती है तो उस वक्त प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है और इंसान की जान भी जाती है, तो इंश्योरेंस क्लेम्स जो होते हैं वो भी एक तरह से मायने रखते हैं क्योंकि उसे लोगों को सहायता मिलती है। तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, आपको कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं अप्लाई करने के लिए, जो भी फॉर्म भरने होते हैं, जिस भी कार्यालय में उनको अप्लाई कराना होता है वो हमारा प्राधिकरण उनकी मदद करता है।
1: जी, और सबसे बड़ी बात आती है कि जब आपदा आती है तो क्या इस योजना के अंतर्गत मानसिक या मनोवैज्ञानिक सहायता भी दी जाती है? क्योंकि जिनका घर बार बिखरता है तो वो मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाते हैं, तो इस तरह की भी सहायता दी जाती है?
2: अगर हम मुख्यतः बात करें तो यह योजना विधिक सहायता पर केंद्रित है, लेकिन जैसे ही आवश्यकता पड़ती है, कई स्पेशल केस होते हैं, तो अन्य एजेंसियों के साथ भी हम समन्वय कर लेते हैं और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं।
1: जी, तो क्या ये योजना दूरस्थ क्षेत्रों में भी लागू होती है?
2: हाँ जी, ये जो हमारे इंटीरियर एरियाज हैं उसमें भी ये बिल्कुल इक्वली ही इम्प्लीमेंट की जाती है।
1: जी, क्या पीड़ितों को अदालत में जाने की आवश्यकता होती है?
2: हर मामले में अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कई मामलों का समाधान मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से अदालत से बाहर ही हो जाता है।
1: तो इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं?
2: इसमें हम विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करते हैं, कई हमारे पोस्टर्स हैं, रेडियो और टीवी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, सोशल मीडिया अभियान चलाते हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ हम समन्वय स्थापित करके लोगों को इसके बारे में बताते हैं।
1: क्या इस योजना में अन्य विभागों के साथ समन्वय होता है?
2: जी बिल्कुल, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन सब के साथ हमारा समन्वय रहता है।
1: इस योजना का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है?
2: बिल्कुल है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और जिला स्तर पर योजनाओं की जो प्रगति है उसका सुपरविजन या मॉनिटरिंग की जाती है और समय समय पर रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं।
1: क्या इस योजना के तहत कुंडल जी विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं?
2: जी हाँ, विशेष परिस्थितियों में विशेष अभियान जैसे लोक अदालतें, सहायता शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक पीड़ितों को लाभ मिल सके।
1: जी कुंडल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस योजना में डेटा संग्रहण और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है?
2: जी, पीड़ितों का जो विवरण होता है या मामलों की जो प्रकृति है, दी गई सहायता या परिणामों का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, जिससे योजना की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।
1: क्या तकनीक का उपयोग इस योजना में किया जाता है?
2: जी, ऑनलाइन पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हेल्पलाइन या डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जाता है।
1: क्या ये योजना अंतर विभागीय समन्वय पर आधारित है?
2: जी हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए, पुलिस, हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट या पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं, इन सब के साथ समन्वय किया जाता है।
1: विक्रांत जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र है?
2: जी, जो पीड़ित होते हैं वो अपनी शिकायतें विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका समयबद्ध निवारण किया जाता है।
1: आपदा की पूर्व तैयारी में विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या भूमिका रहती है?
2: विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा से पहले ही जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण या मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में जानकारी देते हैं।
1: विक्रांत कुंडल जी, आज हमने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की योजना, इस विषय पर जानकारी आपसे ली। आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक ही संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार।
0: अभी आप कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे थे। विजेता विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों की विधिक सेवा प्रदान करने की योजना, श्री विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से भेंट कर रही थी सपना ठाकुर। इसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने से ट्यून किया है। आज सुबह के 9 बज चुके हैं, अब हाजिर हैं हम लेकर के कार्यक्रम गीतांजलि। फरमाइशी फिल्मी गीतों के आज के इस कार्यक्रम गीतांजलि में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। जी हाँ, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और आपकी फरमाइश हम तक पहुंची है ईमेल्स के जरिए। musicmaildshala@gmail.com ये है हमारी मेल आईडी और इस पर आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त है आपके पास 10 बजे तक का और 10 बजे तक आपकी मेल हम कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये संगीतमय सफर, जहां हर गीत के पीछे छिपी होती है किसी श्रोता की मुस्कान, किसी की याद, किसी का एक प्यारा सा एहसास। तो हो जाइए तैयार इस कार्यक्रम के लिए। जी, कार्यक्रम में सबसे पहली हम मेल जो शामिल कर रहे हैं उसे भेजने वाले हैं वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, मनोज भ्याण, और इन्होंने लिखा है प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार। जी, आपको भी हमारा स्नेह भरा नमस्कार। अगली फरमाइश

हमें भेजी है दंतेरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, और ये सप्रेम नमस्कार लिख रहे हैं और किसी भी गीत के लिए ये फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश पर आते हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ये सब फरमाइश भेज रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और साथ ही लिख रहे हैं, आप कैसे हैं जी? हम बहुत बढ़िया हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता भी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही लिख रहे हैं, फर्स्ट मंडे सावन सोमवार की शुभकामनाएं आपको भी, सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, हर हर महादेव जी। और इन्होंने फरमाइश की है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के लिए, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। तो आइए इनकी फरमाइश पर हम और सभी श्रोता मिलकर सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। और श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम आपकी ईमेल्स पर आधारित है और आपकी फरमाइशें हम पूरी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें पहुंची है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से। अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुशी श्याम कुंवर ये भेजने वाले हैं और सप्रेम प्यार भरी नमस्ते इन्होंने हमें लिखा है। आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। अगली फरमाइश पर आएं तो अगली फरमाइश है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, शुभचंद्र बजाज, कालका बिट्टा बजाज। डियर प्रोग्राम एंकर, ग्रीटिंग्स ये हमें भेज रहे हैं, आपको हमारा स्नेह भरा नमस्कार। और किसी भी गीत के लिए इन्होंने फरमाइश हमें भेजी है। अगली फरमाइश की बात करें तो सरस्वती चंद्र फिल्म के गीत के लिए ये फरमाइश आई है पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, नीति शाह, कुशल शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, इन सबकी फरमाइश पर और हमारे बाकी सभी श्रोताओं को भी हम ये गीत सुनवा रहे हैं। लीजिए आनंद इस गीत का।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। जी हाँ, आपकी ईमेल्स पर आधारित आज का ये कार्यक्रम है और आप भी अगर अपनी फरमाइश का गीत सुनना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, हमें मेल कीजिए और अपनी फरमाइश, आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे। और मेल आप हमें भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है musicmaildshala@gmail.com। चलिए अगली मेल शामिल करते हैं कार्यक्रम में। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से ये मेल हमें भेजने वाले हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। और ये लिख रहे हैं, आकाशवाणी धर्मशाला की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईमेल पर फरमाइश का कार्यक्रम चलाया, हमारी मांग को पूरा किया, धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे श्रोताओं की जो भी हमसे गुजारिश होती है या का जो भी सुझाव होता है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करें, और ये एक छोटी सी कोशिश है और आप इसे सराह रहे हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगली फरमाइश हमें भेजी है, इन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार, और शतरंज फिल्म के गीत के लिए ये फरमाइश भेज रहे हैं। जय जितेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। शतरंज फिल्म के बहुत ही प्यारे से गीत के लिए फरमाइश इन्होंने भेजी है, उनकी ये फरमाइश पूरी कर रहे हैं। सुनिए अपनी फरमाइश का गीत और सभी श्रोता भी इस गीत को एंजॉय करें।

श्रोतो, आपकी फरमाइशों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल कुछ ही पलों में हम चलेंगे आकाशवाणी शिमला, जहां से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आप यूं ही बने रहिएगा, आपकी ईमेल्स के साथ फिर हाजिर होंगे हम 9:30 पर।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी की जरूरत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 3.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के विकास को सरकार ने दी सर्वोच्च प्राथमिकता। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाया प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से। और सिरमौर जिला में सखी केंद्र बना संकट में फंसी महिलाओं के लिए मददगार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आत्म विनाशकारी आदतों से पूरी तरह मुक्त व अत्यधिक आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 सप्ताह के इस महत्वाकांक्षी अभियान के दौरान आने वाले हर रविवार को कला, संस्कृति, खेल और ध्यान से संबंधित विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि नए प्रतिभागियों को लगातार

0: कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की 8वीं व अंतिम सांस्कृतिक संध्या के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान चंबा जिला में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और जिले में PMGSY के तहत अभी तक 591 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर मशहूर पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल सहित अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कांगड़ा के जमानाबाद में आयोजित 7 दिवसीय मिंजर मेला रविवार को मनुनी खड्ड में मिंजर विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता में कांगड़ा चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज ने की। भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखना एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने युवाओं से ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान भी किया। मेले के दौरान युवाओं और महिलाओं के लिए अलग अलग खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक और भाजपा के उपाध्यक्ष पवन काजल ने इस मौके पर आश्वासन दिया कि प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने पर मेले का दर्जा बढ़ाया जाएगा और आर्थिक सहायता में भी वृद्धि की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। विक्रम ठाकुर ने धर्मशाला में कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने के बजाय भाजपा नेताओं को निशाना बना रही है। भाजपा नेता ने ये आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादला माफिया सक्रिय है और मनचाही तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के दर्जनों गंभीर मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इनमें अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पर लगे गंभीर आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोजगार देने के मामले में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर भाजपा जल्द ही तथ्यों सहित एक चार्जशीट जनता के सामने रखेगी। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी फड़ी, फेरी वालों व अन्य बाहरी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि ये कदम किसी भी तरह की वारदात या अप्रिय घटना रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के बाद कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार और व्यापारी जिले में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को नौकरी अथवा अनुबंध पर तब तक नहीं रखेगा जब तक ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित पुलिस थाने में अपना पंजीकरण नहीं करवा लेते हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से शुरू होगा, जबकि 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। चिकित्सा काउंसलिंग कमेटी MCC के जारी कार्यक्रम के मुताबिक डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग का पहला दौर 4 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा। इस काउंसलिंग में शामिल होने की अंतिम तिथि 22 अगस्त होगी। काउंसलिंग का दूसरा दौर 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा। तीसरा दौर 10 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम, सुरक्षित और संपूर्ण आहार है। शिशुओं के समुचित पोषण, स्वस्थ विकास और कुपोषण की रोकथाम के उद्देश्य से हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी जिला शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का मुख्य उद्देश्य माताओं, परिवारों एवं समुदायों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा प्रत्येक नवजात शिशु को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान प्रारंभ करने, जिससे शिशु को कोलोस्ट्रोम यानी पहला गाढ़ा पीला दूध का लाभ मिल सके, पर विशेष बल दिया जा रहा है। जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध देने के महत्व के बारे में परिवारों एवं समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। शिमला जिला की 11 ICDS परियोजनाओं, 88 वेक्षक वृत्तों और 2154 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सत्र, गृह भ्रमण, मात्र बैठकें, सामुदायिक बैठकें तथा IEC गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री माताओं, परिवारों तथा समुदाय को स्तनपान के वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: महिला व बाल विकास विभाग के तहत नाहन में संचालित वन स्टॉप सेंटर

0: सखी केंद्र संकट में फंसी महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। यहाँ पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और जरूरत पड़ने पर अस्थाई आश्रय जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
1: घर की चारदीवारी के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, छेड़छाड़ और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं के लिए सिरमौर का वन स्टॉप सेंटर भरोसे का केंद्र बनकर उभरा है। पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को मदद के लिए अब अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और उनकी सभी समस्याओं का समाधान वन स्टॉप सेंटर में हो जाता है। अभी तक जिला की 427 महिलाओं और बालिकाओं को वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से सहायता मिल चुकी है। में से 271 मामले महिला हेल्पलाइन 181 और 1091 के माध्यम से केंद्र तक पहुंचे। केंद्र का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि संकट की घड़ी में महिलाओं का हर स्तर पर सहारा बनना है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने शिमला शहर में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक करने और धरने प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। इन स्थानों में उपायुक्त कार्यालय, चौड़ा मैदान, छोटा शिमला चौक, स्कैंडल पॉइंट, विधानसभा चौक और एजी ऑफिस चौक शामिल है। आदेशों में कहा गया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, महिला कांस्टेबल के आरोपों पर आयोग ने दिए जांच के निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, नशा नियंत्रण से भी तय होगा डीसी और एसपी की एसीआर। मिंजर मेले पर दिव्य हिमाचल लिखता है, मुख्यमंत्री सुक्खू ने निभाई मिंजर विसर्जन की रस्म। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी की जरूरत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 3.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के विकास को सरकार ने दी सर्वोच्च प्राथमिकता। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लगाया प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से। और सिरमौर जिला में सखी केंद्र बना, संकट में फंसी महिलाओं के लिए मददगार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप एक बार फिर हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। आपकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं आज के कार्यक्रम गीतांजलि में, और कार्यक्रम में एक बार फिर सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत। जी हाँ, आपके द्वारा भेजी हुई ईमेल्स हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। म्यूजिक मेल dshala@gmail.com ये है हमारी ईमेल आईडी, और इस ईमेल पर आप भी अपनी मेल भेज सकते हैं और क्या पता अगली पढ़े जाने वाली मेल आपकी हो। अगली मेल शामिल कर रहे हैं बलकरण शर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, यश परायण वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश भेज रहे हैं किसी भी गीत के लिए। अगली फरमाइश है, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। फिल्म चांदनी के लिए फरमाइश ये भेज रहे हैं डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी, और ये फरमाइश हमारे पास है रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जशीन खान की। हनुमानगढ़ राजस्थान से ये फरमाइश भेज रहे हैं, साथ ही प्यार भरा नमस्कार भी हमें कह रहे हैं। आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार, और इन्होंने भी फरमाइश की है चांदनी फिल्म के गीत के लिए। तो आइए सुनते हैं चांदनी फिल्म का ये गीत।

आप ऐसे में आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। आपकी ईमेल्स को हम पढ़ रहे हैं और आपकी फरमाइश ईमेल्स के जरिए हम पूरी कर रहे हैं। कार्यक्रम है गीतांजलि। अगली फरमाइश पर आते हैं। आदाब, किसी भी गीत को शामिल करें और एक ही मेल में बहुत सारे फरमाइश करता है ये बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डंगुरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अबीदा और दानिश अंसारी, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभियानंद आर्या और परमानंद आर्या, सरीमपुर बक्सर से इस ही मेल में ये नाम लिखे हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी का। और किसी भी गीत के लिए इनकी फरमाइश है। अगली फरमाइश पर आते हैं। वंदे मातरम जी, जी वंदे मातरम। प्रिय प्रसारक प्रसारिका दोस्त जी, ये अनुरोध कर रहे हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद मखीजा, काफिर भाई श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक मोनू उन्नति, धनशानी कीरत राय बागवानी, प्रदीप कुमार साहू और पूरा मखीजा कुटुंब। और किसी भी गीत के लिए इन्होंने फरमाइश की है। अगली फरमाइश पर आते हैं। ये भेजने वाले हैं कोटी सिटी बरका काना से अफजल ताज, शहीना सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। किसी भी गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश है। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और सप्रेम नमस्कार भी इन्होंने लिखा है। आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, और धर्मवीर फिल्म के गीत के लिए ये फरमाइश कर रहे हैं। हम बंजारों की बात ना पूछो। तो चलिए पूरी करते हैं इनकी फरमाइश और उम्मीद है सभी श्रोता इस गीत को पसंद करेंगे।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ आप इस समय हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गीतांजलि, जो आपकी ईमेल्स पर आधारित है। म्यूजिक मेल dshala@gmail.com ये है हमारी ईमेल आईडी, और आप भी फरमाइश भेज सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं जी। अगली फरमाइश शामिल करते हैं, पटेल नगर मलॉट से ये लिख रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू किसी भी गीत के लिए फरमाइश ये कर रहे हैं। अगली फरमाइश है, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें, और लिखने वाले हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस माउथान भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार जी। अगली फरमाइश की बात करें तो राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी इस फरमाइश को भेजने वाले हैं गांव फरांसी जिला हिसार से, किसी भी गीत की फरमाइश इनके द्वारा की गई है। अगली फरमाइश हमारे पास आई है टिप टिप बरसा पानी फिल्म के गीत के लिए, और फरमाइश भेजने वाले लिख रहे हैं, हाय मैम, हेलो जी, सुप्रभात, हम आपका कार्यक्रम कांगड़ा जमानाबाद से सुन रहे हैं पूरे परिवार के साथ। हम हैं सानवी, मानविक, श्वेता, ऋषि और पूरा धीमान परिवार जी। बेहद शुक्रिया सभी श्रोताओं का हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए, आकाशवाणी धर्मशाला का साथ देने के लिए और प्यारे प्यारे से ईमेल्स भेजने के लिए। कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं टिप टिप बरसा पानी ये गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीतांजलि। आपके ईमेल्स पर आज का ये कार्यक्रम आधारित है। musicmail@gmail.com इस ईमेल आईडी पर आपने हमें फरमाइश भेजी है और भेज सकते हैं। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में, जो हमें भेजी है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से सुल्तान सिंह तरार, कृष्ण मुकेश तरार, रामचंद्र तरार, कपिल देव तरार, हिमानी झाकर। और किसी भी गीत के लिए फरमाइश इन्होंने की है पठानकोट से ज्योत्सना पठानिया। किसी भी गीत के लिए इन्होंने फरमाइश हमें भेजी है। अगली फरमाइश पर आते हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू। अगली फरमाइश, किसी भी गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले हैं दंतेरी के से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। ये फरमाइश हमारे पास आई है ललिता देवी लंच से, ये फरमाइश भेज रहे हैं। और शिवेन भी लंच से ही फरमाइश कर रहे हैं। एक प्यार का नगमा गीत के लिए उन्होंने फरमाइश की है, तो उनकी फरमाइश पर सभी श्रोताओं को और उनको ये गीत सुनवा रहे हैं। आनंद लीजिए इस गीत का।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि में अब बहुत थोड़ा सा वक्त हमारे पास है और अगली जो मेल हमारे पास आई है वो आई है प्रोफेसर कलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से। आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी उद्घोषिका जी नमस्कार ये लिखते हैं और किसी भी सदाबहार गीत को शामिल करने के लिए उन्होंने फरमाइश की है, आपको भी हमारा नमस्कार और आपको हम गीत सुनवाएंगे। अगली फरमाइश ले लेते हैं चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ये फरमाइश भेज रहे हैं किसी भी गीत के लिए। अगली फरमाइश हमारे पास आई है श्रोताओं, ये फरमाइश है राजेश कुमार कौशल, तहसील भौरंज, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ये हमें फरमाइश भेज रहे हैं।

कार्यक्रम के आखिर में एक गीत हम सभी श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, जिनकी मेल हम शामिल कर पाए वो भी सुने, और जिनकी मेल्स हम शामिल आज के इस कार्यक्रम में नहीं कर पाए वो भी इस गीत का आनंद लें। और सभी श्रोता हमसे दोबारा जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, बुधवार को भी ये कार्यक्रम आपके लिए होगा, ख़ास तौर पर आपकी ईमेल्स पर आधारित, और उस कार्यक्रम में भी ईमेल्स भेजना ना भूलें। म्यूजिक मेल dshala@gmail.com ये है हमारी ईमेल आईडी।

श्रोतावास के कार्यक्रम गीतांजलि में बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ और तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह। ईमेल्स के जरिए इतना प्यार मोहब्बत हम तक पहुंचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इसी तरह से आकाशवाणी धर्मशाला के साथ जुड़े रहिए और ईमेल्स भेजते रहिए म्यूजिक मेल dshala@gmail.com पर।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। खूबसूरत सा संगीत है उत्तम सिंह का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रीना के साथ। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल ने जिसे अपना कहा से ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। संगीत हिमेश रेशमिया का है और गीतकार हैं समीर।

अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की मिलीजुली आवाजों में। आइए अब सुनते हैं फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के से ये गीत। संगीत जतिन ललित का है। गीतकार समीर।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में देव कोहली का लिखा गीत कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है उदित नारायण हरिहरन, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन ने।
1: I love you।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है विक्रांत, संदेश व साथियों ने।

कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं अक्षर सिंह परमार की आवाज में।

0: सी सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रीना ठाकुर की आवाज में।

0: सदा माली।
1: राजेश कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मानसिंह और सुनील राणा की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक विक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। विक्रम ठाकुर ने धर्मशाला में कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने के बजाय भाजपा नेताओं को निशाना बना रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादला माफिया सक्रिय है और मनचाही तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के दर्जनों गंभीर मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इनमें अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पर लगे गंभीर आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोजगार देने के मामले में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर भाजपा जल्द ही तथ्यों सहित एक चार्जशीट जनता के सामने रखेगी। शिमला जिला परिषद के जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज शिमला में बैठक होगी। शिमला जिला परिषद में कुल 25 सदस्य हैं और चुनाव के लिए 17 सदस्यों का मौजूद रहना जरूरी है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार इस समय शिमला जिला परिषद में 12 सदस्य भाजपा समर्थित जबकि 11 सदस्य कांग्रेस समर्थित है, वहीं 2 सदस्य निर्दलीय है। किसी भी दल को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए 2 निर्दलीय सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इस बीच शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने दावा किया है कि भाजपा के पास जिला परिषद में 15 सदस्यों का समर्थन हासिल है। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से शुरू होगा, जबकि 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। चिकित्सा काउंसलिंग कमेटी MCC के जारी कार्यक्रम के मुताबिक डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग का पहला दौर 4 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा। इस काउंसलिंग में शामिल होने की अंतिम तिथि 22 अगस्त होगी। काउंसलिंग का दूसरा और 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा। तीसरा दौर 10 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा। युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 3 दिवसीय लीडरशिप बूट कैंप का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस आयोजन की प्रवक्ता रीता देवी ने कहा कि इस बूट कैंप में जिले के अलग अलग हिस्सों से 35 युवा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मकसद युवाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाना है।
2: इस कार्यक्रम का मेन मकसद है कि बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे लीडरशिप बूट

0: बूट कैंप लगाया जाता है, बच्चों को अनुशासन हर चीज के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे बच्चे अपने कल्चर के बारे में बताएं और अपने हर चीज की, कोई भी एक्टिविटी होती है, अपने सिरमौर से कहीं बाहर जाना हो, कैसे रहना, खाना पीना सहना, अपने कल्चर के बारे में कैसे आगे बताना है कि कैसे क्या किया जाए।
1: प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों ने कहा कि विकसित भारत में युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है, ऐसे में इस तरह के शिविर युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
2: अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा, हमें यहाँ बताया गया कि कैसे यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया जाता है और किस प्रकार संसद भवन में हम आयोजन कर सकते हैं एक यूथ पार्लियामेंट का।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अर्की उपमंडल के चंडी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 68 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। स्वयंसेवक संघ के जिला शारीरिक प्रमुख पवन शर्मा ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान महादान है और इस पुनीत कार्य से मुश्किल में फंसी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से ऐसे पुनीत कार्य के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने का आह्वान भी किया। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने शिमला शहर में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक करने और धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इन स्थानों में उपायुक्त कार्यालय, चौड़ा मैदान, छोटा शिमला चौक, स्कैंडल पॉइंट, विधानसभा चौक और एजी ऑफिस चौक शामिल है। आदेशों में कहा गया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। राज्य में अधिकांश स्थानों पर आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा हुई। इस दौरान पांवटा साहिब में सर्वाधिक 76 मिलीमीटर, धर्मशाला में 28 और पालमपुर में 15 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी।
4: नमस्कार दोस्तों, आज दिल नूं थोड़ा जिहा छुट्टी ते भेज दिओ, चिंतावां नूं इक पासे रख दिओ ते सुरां नाल दोस्ती कर लो, क्योंकि शुरू हो चुका है तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम महक पंजाब दी।

महफिल जो तो पंजाबी सुरा दी होवे ता हर गीत एक नवा रंग लेके आउंदा है। आओ इस रंग नू होर गूढ़ा करिए।

0: महक पंजाबी का सफर जारी रहेगा एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक तो बाद।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों का साथ होवे, सफर लंबा होवे या चाह का एक प्याला, पंजाबी गीत हर पल नू यादगार बना दिंदा है। लो पेश है अगली पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाब दी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
1: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
0: जी,
1: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
0: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के

0: पुरस्कार।
1: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं की बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
0: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
0: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
0: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: रामप्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
3: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने

0: बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
3: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे।
0: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थीं, उनमें जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग ना होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता।

0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षर

0: काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
1: कहते हैं अलविदा हम अब

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

ने राग शंकरा की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं, अभी जी सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों और बहनों, जय हिंद। देश की सीमाओं पर डटे हमारे सभी जाबाज सैनिक भाई बहनों को हमारा दिल से सलाम। देश की सेवा में तत्पर हमारे सैनिक भाइयों के दिन में कुछ ऐसे लम्हे लेकर आने की कोशिश हम करते हैं जो उनको थोड़ा सुकून दे। तो कार्यक्रम सैनिकों के लिए में सभी सैनिक भाई बहनों का स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

कुमार सानू और संजीवनी की आवाजों में करीब फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। देश की मिट्टी का मान बढ़ाते हमारे वीर साथियों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने का हमारा ये प्रयास, और उम्मीद कर रहे हैं हमारे सैनिक साथी इन गीतों को पसंद कर रहे होंगे। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, बॉर्डर फिल्म का ये गीत है। रूप कुमार राठौर की आवाज़।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
4: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
5: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सीमाओं की निगहवानी पर आप तैनात हैं सैनिक भाई बहनों, और सुरों की ये छोटी सी महफिल सजाने की कोशिश हम कर रहे हैं। पेश है एक और दिलकश गीत सिर्फ आप सबके लिए।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और

सैनिक साथी, उम्मीद है आपकी दिनचर्या में आज हमने कोशिश जो की आपके लिए कुछ सुकून के पल जोड़ने की, उसमें हम कामयाब रहे होंगे। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। सैनिक भाइयों और बहनों, जय हिंद।

स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, बातों और गीतों के इस मिले जुले सफर में एक बार फिर से हाजिर है हम, और आज मैं हूँ आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, सखियों, बहुत सी बातें लेकर आते हैं हम हर दिन आप सबके लिए, और साथ में लेकर आते हैं खूबसूरत से नगमे आप सभी के मनोरंजन के लिए। तो कार्यक्रम की अभी शुरुआत है, और शुरुआत में हम बात करेंगे मौसम की और सावधानियों की। बरसात के इस खूबसूरत मौसम में पर्यावरण, वातावरण कितना खूबसूरत दिखाई देता है, और पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो मानो बादल धरती को छू रहे हों। वातावरण एकदम साफ सुंदर होता है, और हर पेड़ पौधा इसी मौसम में अपने यौवन पर होता है। बहुत जल्दी ये बढ़ते हैं और साफ स्वच्छ वायु हवा हमें देते हैं। तो इस मौसम में सखियों, आप भी ज़रूर पेड़ लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा और सुंदर बनाए रखने में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकती हैं, और लोगों को भी आप पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी को खास मौके पर कुछ देना ही है तो क्यों ना एक पौधा दिया जाए जिसे वे लगा सकें और उसे बढ़ता हुआ देख सकें। इसके साथ ही सखियों, साफ सफाई स्वच्छता की अगर हम बात करें तो इस मौसम में ज़्यादा करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। गलियों नालियों में कूड़ा करकट जो हम लोगों द्वारा ही फेंका गया होता है वो बहकर बाहर आ जाता है, कई बार चलना मुश्किल हो जाता है, और बदबू भी फैली होती है बहुत सी ज़्यादा। इसलिए किसी भी तरह का कूड़ा करकट गलियों या नालियों में ना फेंकें, बल्कि कूड़ेदान में ही डालें, और कूड़े वाला आता है ना कई जगह, तो उसमें डालें। इससे क्या होता है कि साफ़ सफाई भी रहती है और कूड़े का निपटारा भी हो जाता है, और इस मौसम में फिसलन काई भी बहुत ज़्यादा होती है। लगातार बारिश होने की वजह से नमी रहती है और काई पैदा होती है, जिस पर चलने से फिसलन की वजह से बहुत सी दुर्घटनाएं बहुत बार होती हैं, कई बार हम सुनते हैं है ना, पढ़ते भी हैं। तो साफ़ सफाई ज़रूर करते रहें और बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए काई को हमें पनपने ही नहीं देना है। जब भी मौसम साफ़ हो, अच्छी धूप खिली हो, तब आप इसे साफ़ कर दें, या किसी अच्छी दवाई का छिड़काव भी आप कर सकते हैं जिससे ये उत्पन्न ही ना हो। घर के आसपास भी घास पैदा ना होने दें। बहुत ही जल्दी बरसात के मौसम में घास पैदा होता है, बहुत जल्दी बड़ा होता है, और जिससे क्या होता है कि हमारा चलना फिरना घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बड़े बड़े घास में तो कई बार कई जहरीले कीड़े जानवर भी आजकल छिपे रहते हैं, और इस मौसम में इनके काटने का भी बहुत सी खबरें हमें मिलती हैं। तो ऐसे एकदम हाथ नहीं डालना है घास में। खेतों में भी अगर आप काम कर रही हैं तो पहले अच्छे से देख परख लें, उसके बाद ही काम करें, और घास का निपटारा भी समय समय पर करते रहें ताकि इस तरह की बातें ही ना हो। बच्चों को भी समझाएं कि एकदम किसी चीज़ में हाथ ना डालें, और बाहर भी कोई चीज़ या सामान ना रखें, क्योंकि इस मौसम में बारिश से छिपने के लिए कई कीड़े या जानवर जहरीले जो होते हैं वो सामान में या जूते चप्पल में भी कई बार छिपे रहते हैं। तो एकदम से उनमें भी हाथ ना डालें, पहले से अच्छे से देख परख लें, उसके बाद ही इन्हें छुएं। तो इन बातों का ध्यान रखें सखियों, और

भारी बारिश में जहां तक हो सके घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, और हम आपका मनोरंजन करवाते रहते हैं खूबसूरत से गीतों के साथ। ढेर सारी बातें भी आपके लिए लेकर आते हैं और खूबसूरत से नगमे भी लेकर आते हैं मनोरंजन के लिए। तो चलिए, वक्त है एक खूबसूरत से गीत सुनने का, साथ में सुनते हैं और मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: दादी, कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम सुनो सखी में, और आज मैं हूँ आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। और सखियों, अब हम बात करेंगे अपने इस खूबसूरत से सुंदर से राज्य हिमाचल की। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसके नाम से ही लगा सकते हैं, हिम जमा आंचल, जिसका अर्थ है बर्फ़ की गोद या बर्फ़ का आंचल। हिमाचल बर्फ़ से ढके पहाड़ों की गोद में बसा हरियाली से भरपूर राज्य है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। हिमाचल सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से ही सुंदर नहीं है, बल्कि इसकी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, बोलियाँ और नृत्य बहुत ही सुंदर हैं। देव भूमि इसे कहा जाता है, देवी देवताओं का वास भी इस खूबसूरत प्रदेश को माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति अपनी अनूठी परंपराओं, लोक कलाओं और देव पूजा के लिए जानी जाती है। यहाँ की मुख्य पहचान नाटी, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और देवी देवताओं से जुड़ी हुई आस्था है। नाटी झमाकड़ा यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे कुल्लू, शिमला और कांगड़ा, सिरमौर जैसे जिलों में उत्सवों पर किया जाता है। कांगड़ा शैली और बसोहली की लघु चित्रकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, चंबा का मिंजर मेला जो अभी खत्म हुआ, और रामपुर बुशहर का लवी मेला यहाँ के प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव हैं। भाषाओं की अगर हम सखियों बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से हिंदी और विभिन्न पहाड़ी बोलियाँ जैसे कांगड़ी, मंडयाली, कुल्लवी बोली जाती है। यहाँ कई तरह की जनजातियाँ जैसे गद्दी, किन्नर, गुज्जर और लाहौली समुदाय इस राज्य की संस्कृति को और ज़्यादा समृद्ध बनाते हैं। हिमाचल की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। बात करें पहाड़ों के जीवन की, तो इसमें इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है कि ये तो इनमें रहने वाला ही बता सकता है। शहरों नगरों के शोर शराबों से दूर गांव की, पहाड़ों की शांति मन को बहुत ही सुकून देती है, जहां सिर्फ हम जीते नहीं बल्कि सुकून के साथ अपनी जिंदगी जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण जीवन प्राकृतिक और बेहद ही सरल होता है। गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों पर निर्भर होते हैं। यहाँ का वातावरण शांत, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त होता है। ग्रामीण परिवेश में परिवार, समुदाय का महत्व अधिक होता है। पहाड़ों के लोग बेहद ही मेहनती, शांत और भोले होते हैं। उनका जीवन या दिनचर्या मेहनत करके ही व्यतीत हो जाती है। वे हमेशा खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और मेहनती होते हैं। भागदौड़ नहीं होती है गांव में, शोर शराबा नहीं होता, बल्कि हर चीज़ में, हर पल में एक अलग ही सुख होता है। ताज़ा, स्वच्छ और पौष्टिक खाना, हवा होती है जिससे हमारा तन मन बेहद खुश रहता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें शहरों के, नगरों के जीवन की, तो ये बहुत ही भागदौड़ वाला होता है, जिसमें कई बार लोगों को

खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता, जिसमें सब कुछ मिलावटी है, खान पान से लेकर हवा पानी तक। ना तो शहरी जीवन में शांति है, ना ही सुख चैन। एक अनचाही सी दौड़ है जिसमें सभी भाग रहे हैं। ना तो किसी के पास किसी के लिए वक्त है, ना ही कोई भाव। बस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। और तनाव और गलत जीवन शैली, जो शायद एक समय तक तो अच्छी लग सकती है, परंतु कुछ समय बाद इससे मन भर जाता है। तब याद आती हैं हमें हमारी जड़ें, हमारा ग्रामीण परिवेश, हमारा गांव। आज हमारी संस्कृति, हमारा परिवेश, सखियों, सब कुछ बदल रहा है और बदल चुका है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल, सब कुछ बदलते वक्त के साथ बदल रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। आज कहने को तो हम सभी के पास सभी प्रकार के साधन हैं, सामर्थ्यवान हैं सभी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है। इसलिए अपना ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी पूंजी है सखियों, जो एक बार अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आता। बाकी चीज़ें आप दोबारा पा सकते हैं, वापस आ सकती हैं, लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो सखियों, अपनी संस्कृति को संजो कर रखें, अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को साथ लेकर चलें। और हम कार्यक्रम को साथ लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, साथ में मिलकर सुनते हैं सखी, और मिलेंगे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में इस गीत के बाद।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में फिर से हाजिर हैं हम सखी, और खान पान का ये पड़ाव है वक्त है रसोई घर में चलने का। और सखियां वैसे भी रसोई घर में ही इस टाइम व्यस्त होती हैं दोपहर का खाना बनाने में। और सखियों, बात करें अगर मीठे की, तो ये हम सभी को ही पसंद होता है, और कई बार तो मीठा खाने की इतनी क्रेविंग हमें होती है कि हम जल्दी से जो भी हमें लगता है कि बहुत आसानी से बन सकता है वो फटाफट से बना लेती हैं। जैसे आज के अगर हम मौसम की बात करें तो हल्की हल्की सी धुंध छाई है और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ का है। और आज भी मन कर रहा है कि कुछ मीठा खाया जाए, तो क्यों ना अगर हलवे की बात करें तो हलवा जो है वो बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी से बनाकर हम खा भी लेते हैं और अपने जो क्रेविंग है उसे भी शांत करते हैं। तो क्यों ना आज घर परिवार की, माफ़ कीजिए, सुनो सकी के इस कार्यक्रम में हम बनाते हैं हलवा। तो हलवे में भी बहुत सी वेराइटी हमारे पास होती हैं, है ना, तरह तरह के हलवे सखियाँ बनाकर खाती हैं। बात करें शाही हलवे की तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये भी जल्दी बन जाता है। और सुनो सखी की रसोई में आज बनाएंगे हम शाही हलवा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दूधिया लौकी लेनी है और उसे धोकर अच्छे से छील लेना है, और उसके बीज निकाल कर, अगर बीज बहुत ही सख्त हैं, कई बार बहुत सख्त होते हैं, वैसे भी उसका जो बीज वाला पोर्शन है वो हमें निकाल लेना है, और फिर उसे कद्दूकस कर लें। फिर उसके बाद गैस जलाएं और उसमें एक कढ़ाई रखें, उसमें 2 चम्मच देसी घी डालें क्योंकि देसी घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर कद्दूकस की हुई लौकी डाल दें और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उसे भून लेना है। जब आपको लगे कि ये अच्छे से भून गई है तो उसमें दूध डाल दें, दूध अच्छा क्रीम वाला लें, और उसे दूध में ही हमें पकाना है धीमी आंच पर, बार बार चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे ना। और जब आपको लगे कि ये पक गई है तो उसमें चीनी, शक्कर, जो भी आप मीठे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो डाल दें। फिर उसे घुलने तक मिलाना है और पका लें अच्छे से। अब इसके बाद सारे सूखे मेवे या जैसे जो भी आपको पसंद होता है, बादाम, काजू, इलायची पीस कर, और दाख अगर पसंद हो तो उसमें अच्छे से डाल दें, और तैयार है हमारा शाही हलवा। आप भी ज़रूर बनाएं, खाएं और मज़ा लें इस शाही हलवे का। और हम लेते हैं मज़ा चलते चलते इस खूबसूरत से गीत का।

गुलामी फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ सखियों हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ जुड़े रहिए हमारे साथ।

चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM एंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 तक और फिर 2 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 तक और फिर दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुँच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized center in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
4: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
3: Union Minister Sanjay Seth and an MP from Jharkhand has alleged serious irregularities in the recruitment process for the Jharkhand Public Service Commission examination, claiming that deserving candidates were denied selection while candidates with significantly lower marks were selected. Talking to Akashwani News, he criticized the Jharkhand government and said no state government representative had met the protesting students despite the ongoing situation. The counting of votes for the by-elections in three assembly constituencies is underway. In Bihar's Bankipur assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading by 21,941 votes. In Gujarat's Manjalpur assembly constituency, BJP candidate Satyendra Bhai Patel is leading by 37,542 votes. In Madhya Pradesh's Datia assembly constituency, Congress Party candidate Ghanshyam Singh is leading by 1,786 votes. Polling for the three assembly constituencies was held on the 30th of last month. A Delhi court today acquitted former Wrestling Federation of India chief Brijbhushan Sharan Singh and co-accused Vinod Tomar in a sexual harassment case filed by women wrestlers. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pawar acquitted ex-BJP MP Brijbhushan and Vinod Tomar and former Wrestling Federation of India Assistant Secretary in the case. The court had reserved the order for today after completion of the final arguments in the case lodged by six women wrestlers. In Odisha, the flood situation is steadily improving with water receding in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced flood water discharge after a decline in reservoir inflow. Pakistani armed forces' brutal attack on peaceful protesters continues in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Violent clashes were reported between protesters and security forces, with the Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir alleging a significant rise in casualties. According to the Human Rights Group, over 80 people were killed in the firing on protesters by security forces. Negotiations between the United States and Iran are scheduled to take place today through intermediaries. Speaking to reporters on board Air Force One, U.S. President Donald Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz. And with that, we end this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

घरोंदा फिल्म का गाना, गुलजार का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर ज़िंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने ये भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है, तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं सुनते आए हैं, अगर तुम हो संगीत सागर हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं, बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में ये गाना हमने सुना। आप ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हों, जहाँ रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हों और वहाँ आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियाँ शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती हैं, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरिया फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाज़ें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली, अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा ज़रूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें से हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूँ गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने यह बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज़ है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। गाना काफ़ी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप ज़रूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन, या फिर यूँ कहें कि शुरुआती जीवन जहाँ हमने बिताया है, वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफ़र ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी

आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना। और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफ़र कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है। नज़र ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाज़ें मुख्य आवाज़ें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए, सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएँ और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी मैं, और जितनी मधुर आवाज़ है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है। बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है। फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है, जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशुदास की आवाज़ में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफ़र कार्यक्रम का सफ़र बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित रह जाओगे। हमेशा अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं।

0: भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ानें, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक पहुँच जाती है। काश हम भंवरे की तरह रिश्तों की खुशबू पहचानना सीख पाते।
1: बगियन का मेहमान है।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभ

0: शुभकामनाएं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
3: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान

0: में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है SD बर्मन का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलालाबादी की बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: असी कहां के
1: हम चांद आत्मा के
0: हाय हाय गुरूर इतना
1: हाँ हाँ इतना
0: उफ ये अदा है ये नशा
1: हाँ हाँ।

0: ये पकड़। हाय हाय हाय तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आत्मा के।
0: हाय हाय गुरूर।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज़, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज़ में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बजने को है। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है। राष्ट्रपति ने 13 स्वर्ण पदकों में से 8 पदक देश की महिलाओं के जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने सभी 39 पदक विजेताओं और खेलों के दौरान योग

0: योगदान देने वाले दल के प्रत्येक सदस्य को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि देश के खिलाड़ी भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में देश को और अधिक गौरवान्वित करते रहेंगे। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्षों के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने नागरिकों को अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने और सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। इस अवसर पर अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है।
1: जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
0: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज शिमला में बुलाई गई बैठक में 25 सदस्यीय जिला परिषद के एक भी निर्वाचित सदस्य के न पहुंचने से ये चुनाव फिलहाल टल गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि बैठक में किसी भी सदस्य के नहीं पहुंचने के कारण आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारणों की प्रशासन द्वारा जानकारी ली जाएगी और इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जल्द ही अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी।
2: आज की जो है वो बैठक निर्धारित की गई थी, उसमें कोई सदस्य भी उपस्थित नहीं हुआ है और हमारे जिला पंचायत अधिकारी इसकी हमें पूरी सूचना देंगे कि क्या कारण रहा कि क्यों कोई उपस्थित नहीं हुआ, उसके उपरांत हम इसकी अगली तिथि निश्चित करते हैं।
0: विधायक अजय सोलंकी ने कहा है कि नाहन शहर में स्थित ऐतिहासिक परशुराम का जीर्णोद्धार कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा लगातार इस मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग उठाई जा रही है और इसे लेकर एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अजय सोलंकी ने कहा कि बरसात के कारण मंदिर की सुरक्षा दीवारों को नुकसान पहुँच रहा है और इसके रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3: राम भगवान जी का प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है, इनके रखरखाव के लिए कोई फंड्स जो है अवेलेबल नहीं होते हैं। उसी संदर्भ में हमने त्रिलोकपुर ट्रस्ट की बैठक में एक निर्णय लिया था कि इसके जीर्णोद्धार के लिए भी हम त्रिलोकपुर मंदिर से जो कुछ पैसा मुहैया करवाया जाए मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए और मंदिर के आसपास की जो बरसात की वजह से दंगे बैठ रहे हैं और मंदिर के जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुँच रहा है, सभी के सुझाव लेकर जो है इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा।
0: ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से शुरू होगा, जबकि 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। चिकित्सा काउंसलिंग कमेटी MCC के जारी कार्यक्रम के मुताबिक डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग का पहला दौर 4 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा। इस काउंसलिंग में शामिल होने की अंतिम तिथि 22 अगस्त होगी। काउंसलिंग का दूसरा दौर 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा। तीसरा दौर 10 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बिक्रम ठाकुर ने धर्मशाला में कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने की बजाय भाजपा नेताओं को निशाना बना रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादला माफिया सक्रिय है और मनचाही तैनाती के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के दर्जनों गंभीर मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इनमें अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
4: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है सौर ऊर्जा का विकास एक नए युग में प्रवेश। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है। वाचक स्वर प्रभा

0: भारत में सौर ऊर्जा का विकास एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अनुमोदन के साथ एक बड़ा बढ़ावा मिला है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण के समर्थन वाले 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर क्षमता का विकास करना है। सौर ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के सबसे मजबूत प्रेरकों में से एक बन गई है। क्षमता, विनिर्माण और उपभोक्ता अपनाने में वृद्धि ये दर्शाती है कि समन्वित नीतिगत समर्थन किस प्रकार एक उभरती तकनीक को मुख्यधारा के ऊर्जा स्रोत में बदल सकता है। ये क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, आर्थिक विकास को गति देता है, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और भारत को एक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा नेता के रूप में स्थापित करता है। एक दशक पहले भारत के बिजली मिश्रण में सौर ऊर्जा का हिस्सा बहुत छोटा था। आज ये देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है। वर्ष 2014 में लगभग 3 गीगावाट की स्थापित क्षमता से इस क्षेत्र का विस्तार 50 गुना से भी अधिक हुआ है और ये 30 जून 2026 तक 162.15 गीगावाट तक पहुंच गया है। ये परिवर्तन नीतिगत समर्थन, अवसंरचना विकास, विनिर्माण विस्तार और नागरिक भागीदारी से प्रेरित है। सौर पार्क, रूफटॉप प्रणाली और सौरीकृत कृषि पंप जैसे पहल देश भर में इसकी तैनाती को तेज कर रही हैं। सौर वृद्धि के लिए न्यूनतम प्रमुख पहल नई मंजूर की गई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का समर्थन करना है। कम से कम 2 घंटे की भंडारण क्षमता वाले ईएसएस राज्यों को पीक डिमांड प्रबंधन में और सहायता करेगी। मौजूदा जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग करके ये योजना दुर्लभ भू संसाधनों पर दबाव को कम करेगी। ये एकीकृत ऊर्जा भंडारण के माध्यम से ग्रिड विश्वसनीयता में भी सुधार करेगी। 5070 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के साथ इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू किया जाएगा। ये योजना राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा किए गए आकलन पर आधारित है। इस आकलन के अनुसार भारत के जलाशयों और उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकायों में लगभग 102.18 गीगावाट पावर की फ्लोटिंग सौर क्षमता की संभावना है। इस योजना से लगभग 10 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में वार्षिक कमी आने की उम्मीद है। ये 16,000 से 17,000 पूर्णकालिक समतुल्य रोजगार सृजित करेगी। साथ ही ये फ्लोटेशन सिस्टम पीवी सेल मॉड्यूल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देगी। इस योजना के माध्यम से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होने के पात्र होंगे। इस पहल से भारत की फ्लोटिंग सौर क्षमता वर्तमान लगभग 700 मेगावाट से बढ़कर 5000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। ये समन्वित गतिशीलता हमारे समक्ष मापने योग्य परिणाम लेकर आई है। देश ने 2025 में 37 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी, जिससे ये वार्षिक वृद्धि में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बनकर भी उभरा है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। भारत के सौर विस्तार की नींव एक मजबूत नीतिगत ढांचे ने रखी। प्रमुख प्रयासों में राष्ट्रीय सौर मिशन 2010, सोलर पार्क योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कार्यक्रम और प्रतिस्पर्धी बोली शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर बड़े पैमाने पर सौर तैनाती को गति दी। सौर तैनाती विविध भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में फैली हुई है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र स्थापित क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी का यह शिमला केंद्र है, कृपया हमारी

0: अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: प्रगाढ़ होता है और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा और कई बार जो बच्चियाँ हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
2: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा, जैसे आपने कहा ना कि उसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीज़ों की जब कमियाँ आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
3: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
2: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते हैं।
3: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
4: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
5: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
6: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
5: अब हम उसे कटवा लेना।
6: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
4: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया।

0: दोपहर ढलने पर चार पांच आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
1: रुको, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
0: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
2: इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
1: जी,
2: ये क्या बात है?
1: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
2: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
1: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
2: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
0: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
1: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
2: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
1: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
0: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं, और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
2: क्या बात है मनोहर सिंह?
1: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
2: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
0: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे, तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो तीन तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
1: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
3: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
2: क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
1: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
2: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
0: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
3: ठाकुर साहब, ये अंगूठी एक

0: अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
1: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
2: अशिक्षित कार हृदय, अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
3: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतज़ार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतज़ार आज पूरा हो गया।
4: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज़, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल।
3: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है, कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीज़ें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
4: बिल्कुल।
3: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीज़ों को छूने की पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
4: विषय है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
3: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
4: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: कि क्या क्या सीखा,
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज़ सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीज़ों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहाँ से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात,
0: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहाँ से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीज़ों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज़ या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज़ के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोज़ाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है, यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीज़ें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कम्फर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज़ वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फ़ायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भाई जो रूटीन की चीज़ें हैं उनसे बंध कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुँचा रहे हैं, इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी ज़रूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया या इसका आनंद होता क्या है, ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए, ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पर दुकान पर ले जाएँ जहाँ पर इस तरह की कैंडीज़ वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छुमंतर, और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीज़ों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है। वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है, और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज़्यादा समय मिलेगा हमें। सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोज़ाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता ये है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल, जहाँ एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहाँ से समय निकालें, लेकिन वो चीज़ जब हमें रुचि देने लगती है और मज़ा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वहीं उस चीज़ के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है,
2: बिल्कुल।
1: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं,
2: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी ज़रूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत ज़रूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
1: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
2: बिल्कुल, चीज़ें तो वही होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल के कोई चीज़ को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज़ है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई रेसिपी हम बना सकते हैं।
1: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
2: चलिए।
1: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुँच जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है, और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे ज़रूर पूरा कर लेंगी, और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
2: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
1: जी,
2: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीज़ों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है, और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है, प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
1: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
2: जी।
1: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं, एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरन।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना, तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता है, कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज़्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज़ एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
5: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉयड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉयड फोन और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फ़ोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है, तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
4: बिल्कुल,
5: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
4: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज़ का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
5: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे ज़रूर खाते थे।
4: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मूढ़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पर इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
5: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची चीज़, यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं। और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
4: उसका जो मसाला है जी
5: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुड़ी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही
1: हैं भाई? हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालपुरी को भेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुड़ी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार
1: सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सायं के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च

0: पे गया था
1: जी जी
0: काफ़ी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीज़ें जहाँ पे बताई हैं, गज़ब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने ज़माने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।
1: जी
0: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
1: जी
0: देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: शुक्रिया एक बार
1: जी
0: और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आपने
0: जी
1: कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के
0: जी
1: चश्मे उतर जाते हैं,
0: जी
1: ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
0: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की
1: जी
0: कांच की,
1: जी
0: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं, उसके
1: जी
0: पीछे लेंस रहती है। हाँ, जो भिंग रहता है आँख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आँख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीज़ें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है,
1: जी
0: उसके बाद पीछे का पर्दा है
1: जी
0: जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस
1: जी
0: है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता
1: जी
0: दिया। अब ये जो है, जो लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शक होता है और ये ज़्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफ़ेद होता है, जैसे अपने बाल सफ़ेद होते हैं,
1: जी
0: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
1: जी
0: जब
1: जी
0: तक कि अपनी ज़िंदगी है। तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफ़ेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा।
1: जी
0: एक
1: जी
0: सिंपल चीज़ है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है।
1: जी
0: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो
1: अच्छा
0: पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है।
1: जी,
0: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके
1: और ये
0: रिजल्ट्स आते
1: सभी
0: हैं,
1: जांच में पता चल जाता है
0: जांच में
1: कि
0: पता
1: हो
0: चल
1: रहा
0: जा
1: है।
0: जा ज़्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र के वजह से होता है। जो ज़्यादातर पहले ज़माने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफ़ी जल्दी दिखाई दे रहा है। 40, 45, 50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे
1: इसकी
0: हैं।
1: क्या वजह हो सकती है?
0: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक
1: अच्छा
0: जो आया है हमारे आँख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई
1: जी
0: मार लग
1: जी
0: जाए किसी को,
1: जी
0: या डायबिटीज़ में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप, ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीज़ें नहीं रहती है, और 80%, तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नज़दीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफ़ी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आँख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता, पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफ़ी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहाँ से फैलते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर अब पेशेंट की आँख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज़ करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा।
1: जी
0: काफ़ी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफ़ी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं देखा है, मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफ़ेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो किसी भी
1: जी
0: उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक चीज जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं,

0: उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी काफी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल लेंस, पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं,
1: अच्छा,
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
1: जी, जी।
0: लेकिन अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी
0: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी मेरे दोस्त की मदर इन लॉ जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो व्हाट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके,
1: जी
0: शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, इतना अरसा हो गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है अब उनकी और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना।
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था,
1: अच्छा,
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम दिखाई दे रहा है।
1: जी,
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फिर कोई इमल्सिफिकेशन हो मोतिया तोड़ने के लिए, वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर उसको तोड़ के निकाल के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह, हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है, आजकल काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है। पेशेंट को हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी जी,
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट।
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है।
1: जी,
0: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं,
1: जी,
0: वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल,
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
1: जी बिल्कुल,
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया,
1: जी,
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहाँ गिरेगा, आंख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल,
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
1: जी,
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा अगर पीछे

0: नस, मेन चीज पीछे की नस है। प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सह लेगा?
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई, तो गई दृष्टि फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहाँ जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
0: जी बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं।
1: जी जी
0: नेत्रदान में एक बात समझनी ज़रूरी है कि आँख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आँख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फ़ायदा होगा?
1: जी
0: जिन लोगों की आँख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से, या दुर्घटना के वजह से, या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फ़ायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके। काफ़ी सेंटर्स हैं आजकल, तो ऑनलाइन आप, आपके नज़दीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आँख बंद कर देते हैं ना,
1: जी
0: आँख
1: जी
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है।
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि
0: जी
1: ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है,
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूँ कोई किसी का देहांत हो तो ये काफ़ी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता,
1: जी
0: क्योंकि सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्रदान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनों को फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो ज़िंदगी निकल जाती है ना।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं, छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजरियस है। क्रिकेट बॉल हो, कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं।
1: जी जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहाँ पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
1: जी
0: काफ़ी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज़ हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत ज़रूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नज़दीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
1: क्योंकि
0: ये
1: ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में
1: जी
0: तो स्पेशली जो भी, लेट से जहाँ पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं
0: फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहाँ पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसके
1: जी
0: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
1: जी
0: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूँ आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: हमारा सेठ नहीं देता, सेठ नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज़ वेरी चीप, सेठ नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो,

0: के लिए एक
1: खुद नहीं कर सकते लोग।
0: और एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनता है, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने,
0: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है।
1: हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स,
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजुरीज बहुत ज्यादा है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आईज। तो बहुत इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये कंसेप्ट,
1: ये छोटे बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के, खास तौर
0: आंखों के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं
1: जी,
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूँ कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। ना कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता
1: जी।
0: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूँ कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में। जो
0: नहीं है, फैशन है उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो वैसे उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: हैं। ना ना ना नो नो नो नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर ग्लासेस है
1: जी,
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले
1: जी।
0: ये जो रोड साइड वाले हैं इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है
1: जी जी,
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं, उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है उसके आगे कुछ नहीं है
1: जी। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आँख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आँख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए, एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
1: जी,
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुँच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय हैं, मुफ्त भी है ना अपने देश में। तो
1: बिल्कुल जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ, और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी
1: आ रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: आजकल ज़्यादातर बम्बई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है,
0: हाँ,
1: और वायरल टाइप ज़्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीज़न चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है।
1: तब वहाँ आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज़्यादा,
0: ओहो,
1: सबसे ज़्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स रहते हैं आँख के अंदर, और वो अपने आँख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है।
0: जी
1: तो हर टाइम जब हमारी आँख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आँख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
0: जी
1: आँख को साफ कर रहा है।
0: जी
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी
1: तो हर टाइम जब भी हम आँख झपकते हैं तो एक नया आँख का पर्दा तैयार हो रहा है, आँख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: चीते।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया है, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
0: तो
1: है,
0: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
1: किसी
0: ऊपर?
1: भी परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए। तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख
0: जी
1: को
0: जी
1: पानी मारने में। आँख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज़्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आँख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे हैं, थोड़ी मैल आ रही है आँख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने रे आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
0: जी,
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
0: दिन में नहीं
1: दिन में
0: निकलती।
1: नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूँ, मेरे, आँख को अकेले छोड़िए, आँख को तकलीफ नहीं देना, आँख आपको
0: हाँ,
1: उससे भी ज़्यादा तकलीफ देगी।
0: ओके,
1: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए,
0: हाँ,
1: ज़रूरत हो तो ज़रूर दवाई डालिए। काफ़ी पेशेंट, नहीं, आँख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं, हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आँखों में, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि आँखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो
0: जी,
1: लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत
0: जाइए।
1: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए,
0: हाँ
1: ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आँख को अकेले छोड़िए। अगर
0: जी,
1: आपको लेडीज़ आईलाइनर यूज़ करती हैं, पहले काजल यूज़ किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था,
0: जी जी
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे थे
0: हाँ,
1: तब भी,
0: लड़कों को
1: हाँ
0: भी,
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है, और
0: लड़कियों
1: बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफ़ी
0: जी
1: सेफ़ हैं लेडीज़ के
0: जी
1: लिए,
0: जी
1: जो बाहर से लगते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस
1: वहाँ पे लगा दी। जितना हो आँख को अकेले छोड़िए,
0: हाँ,
1: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आँख को अकेले छोड़िए। हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आँख को।
0: जी,
1: सोचिए, आपके खुद के आँख में आप उंगली डाल सकते हैं?

0: जी
1: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
0: हाँ
1: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
0: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
1: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं आप, वो स्पा में जाइए कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं। जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
0: जी।
1: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गरम नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
0: सही है।
1: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
0: जी,
1: जब ठंड होता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना
0: जी,
1: गरम थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना। आपको लग गया
0: तो
1: गिर गए तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
0: जी।
1: बर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना,
0: जी जी
1: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है।
0: जी
1: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
0: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
1: सेम
0: का असर
1: पानी
0: है।
1: आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
0: जी, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, गुलजार साहब का गाना जी। है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है, ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आँख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियाँ रहती है, पैदाइशी बीमारियाँ रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था, जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियाँ सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफ़ी रेयर डिजीज़ है। लेकिन एक चीज़ हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज़ का।
0: जी, जी.
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है
0: जी.
1: तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज़, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या बीमारियाँ होती है। सरल मैं आपको बता देता हूँ, आँखों में डायबिटीज़ में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा, कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज़, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज़ शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज़ बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी जी,
1: आप कोई भी चीज़ खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स,
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे दिमाग में एक सटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है, जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज़ है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है? उनको ये समझना ज़रूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
0: वो बैलेंस नहीं है।
1: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के तौर। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया
0: जी,
1: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है
0: जी।
1: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
0: हाँ,
1: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी या पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसके वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में
0: जी।
1: अच्छा, पेशाब से निकल जाए, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है, तो क्या नहीं, नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है
0: जी जी,
1: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब ज़रूरी है।
0: जी जी
1: ओके। आँखों में क्या होता है? आँखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स हैं
0: जी,
1: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज़ है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है
0: जी,
1: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहाँ से लीकेज आता है।
0: जी जी,
1: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलर एरिया वो इंट्रा सेलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहाँ हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट। तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का? ब्लड निकल आता है
0: जी।
1: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहाँ पे लाइट जाके लगता है और जहाँ से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खुश अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहाँ कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियाँ आए या खून आए और सूजन आए तो आँख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
0: बिल्कुल,
1: और ज़्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीज़ें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज़ जिनको है आँख का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आँख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
0: जी,
1: उनको पता है सडनली आँख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 साढ़े 300 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक्स को शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
0: जी।
1: डायबिटीज़ की दो ही चीज़ें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
0: जी।
1: डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर ये शरीर की कमजोरियाँ हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो ये चले जाने वाली है,
0: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
1: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
0: जी।
1: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
0: जी,
1: इनको कंट्रोल करते हैं हम
0: जी।
1: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाई यार ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आँख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी

0: उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं ना।
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
0: बहुत
1: कराएं,
0: जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें
0: जी।
1: और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज़ की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज़ में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहाँ पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है, आदमी को अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आँखों में भी काफ़ी टाइम, अगर आँख की जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है, देखिए आँखों को बहुत ही बचाया गया है,

0: देर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है.
1: जी
0: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता. तो वहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है. तो आँखों में काफ़ी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है. तो ये चीज़ें जो है, हाँ, एक और चीज़ जो लोगों को दे, काफ़ी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आँख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं. ये बहुत कॉमन है, ये
1: जी
0: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे. अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई
1: तो
0: देंगे,
1: दिखाई
0: सभी में
1: देता है.
0: है.
1: जी जी
0: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये भी हम कहते हैं. अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा. ओके, लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज़्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आँख के डॉक्टर को आपको बताना है. इसका ये मतलब है कि दो चीज़ें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको आँख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से. ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आँख का हिस्सा नहीं, वो आँखें वहाँ पर चिपका हुआ है. तो जहाँ पर वो चिपका है काफ़ी टाइम, वहाँ से वो सटक भी सकता है, जिसको
1: ओके,
0: रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं.
1: ये प्रेशर की वजह से होता है.
0: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है.
1: अच्छा
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
1: जी
0: सेम चीज है. डिटैचमेंट भी
1: जी
0: स्पॉन्टेनियस हो सकती है
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली,
1: जी जी
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज वेरी डेंजरस. तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए. अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो, उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान होना
0: जान ही
1: शुरू
0: नहीं
1: हो
0: आएगा ना,
1: जाएगा.
0: उसमें
1: जी
0: जान निकल
1: जी
0: जाती है.
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं. वो कौन सी बीमारी है जिसमें
0: ये
1: ये सब होता
0: डायबिटिक
1: है?
0: रेटिनोपैथी में होता है, एक
1: जी
0: जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो. एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं.
1: ये क्या होता है?
0: सो मैक्यूला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है,
1: जी
0: उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्यूला ही कहते हैं
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है. एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्यूला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है. उसके
1: जी
0: दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ.
1: अच्छा
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है. तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा. तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं. तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है.
1: जी
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई. तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है.
1: इसके
0: ये
1: लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है,
1: अच्छा
0: और कोई नहीं,
1: जी
0: कम दिखाई देता है. तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं, तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं. अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ CT स्कैन ऑफ द रेटिना. तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, वो उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहाँ पे सूजन दिखाई देती है. तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें. गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी, अनफॉर्चुनेटली. ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं, उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है. लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस, ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है. तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा, एक दो में भी ठीक हो जाता है, कई तो सालों उनको 4-5 लगते हैं या आते जाते रहते हैं. बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है, तो आंख की रोशनी उनके लिए सब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ
1: ज्यादा
0: शरीर में
1: उसमें हो नहीं
0: देखिए
1: सकते।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आँख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं।
1: जी,
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीज़ों में, आप भी
1: बिल्कुल
0: जानते हैं, वेदर
1: बिल्कुल।
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज़ में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आँखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी चीज़ का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाए चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी
1: जी,
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल यानी क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल।
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात
0: आप
1: है,
0: जानते हैं ना,
1: बिल्कुल।
0: वापस जाइए, वापस 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस
0: वर्चुअल
1: बिल्कुल।
0: इमेज है, अरे
1: हाँ,
0: वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब हम
1: सीधे
0: आप
1: होते
0: एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं। अच्छा,
1: हैं।
0: वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार।
1: कमाल
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी,
0: ये कर
1: यहां तक
0: सका
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसॉफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: जाता
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, देव केप समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: है। यस
0: क्योंकि
1: डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है,
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूँ, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो,
1: दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो
1: सेल्फ
0: जरूर डालिए।
1: मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें, जितना सेल्फ, देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी जी
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू, दे आर मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें।
0: रिप्लेस कर रहे हैं, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल।
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे हैं
0: हाँ,
1: आप
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता,
1: जी,
0: ओके। लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: हाँ, बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए।
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ,
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं, मरने तक शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देगा, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपया करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, ये इतनी सुंदर दृष्टि, जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इम्पॉर्टेंट है, फील भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज़ के लिए है, कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें, किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज़ ना करें।
1: जी,
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज़ के बारे में 10 चीज़ें सोचते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आँख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे ज़रूरी है या नहीं।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात
0: कि
1: है,
0: किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन
1: नो
0: लाइफ,
1: शॉर्टकट्स इन लाइफ। बहुत सही
0: ये
1: बॉटम
0: बहुत
1: लाइन
0: है।
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप
0: थैंक यू,
1: राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में
0: नहीं
1: आपने बातें की। शुक्रिया।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया, और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। हाँ यार, इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता

0: नहीं, कौन कौन दिग्गज आके गए हैं, तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये, तो
1: जी
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: सेहतनामा,
4: अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और

0: विकास समाधान को सरल बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. After passing the bill, Lok Sabha was adjourned for the day. Earlier, the Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. When the House met after the second adjournment at 2 p.m., Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the mantra of reform, perform and transform is being effectively implemented. The minister said that the bill is an important step in the ongoing reform process within the judicial sector. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. Amid the pandemonium, the Lok Sabha was adjourned twice. Rajya Sabha has passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. After passing the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day to meet again at 11 a.m. tomorrow. The BJP has retained the Manjalpur Assembly seat in Gujarat's Vadodara district with its candidate Satyendra Bhai Patel defeating Congress nominee Bhikha Bhai Rabari by over 30,000 votes in the by-election. The counting of votes is also underway for the by-elections to Bihar's Bankipur Assembly constituency and Madhya Pradesh's Datia Assembly seat. In the Bankipur Assembly by-poll, Jan Suraj Party candidate

श्रोताओं, भजन की मधुर धुन जब कानों में उतरती है तो मन की हर बेचैनी पल में संवरती है। इसलिए प्रभु का नाम लेते रहिए और भक्ति की इस महिमा में अपना सर्वस्व लुटाते रहिए।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ थे। और अब एक जरूरी सूचना, सर्वसाधारण व जनता को सूचित किया जाता है कि विद्युत लाइनों के उचित रखरखाव हेतु दिनांक 5/8/2026 को सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 11 KV खनियारा फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पटोला, थात्री, सांबर लाहड़, TTS और जूहल आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित में करना बहुत आवश्यक है। सर्वसाधारण जनता से सहयोग की अपील की जाती है। कृपया सभी लोग बिजली विभाग को सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई।

इसी भक्तिमय रचना के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युवा मंच।

0: सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। युवा दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। युवा साथियों, 12वीं की परीक्षा के बाद हर विद्यार्थी के मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है, अब आगे क्या, कौन सा विषय चुने जिसमें बेहतर शिक्षा के साथ साथ रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी उपलब्ध हों। ऐसे ही उभरते हुए और बहुआयामी क्षेत्र का नाम है कम्युनिटी साइंस। ये क्षेत्र केवल पोषण या गृह प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, मानव विकास, फैशन एवं परिधान, खाद्य विज्ञान, उद्यमिता, संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक विकास जैसे अनेक विषयों को समाहित करता है। आज के युवा मंच में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, कम्युनिटी साइंस में शिक्षा, 12वीं के बाद युवाओं के सुनहरे भविष्य की राह। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जो विद्यार्थियों और अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। आज है हमारे साथ, श्रोताओं आपको बता दें, डॉक्टर अंजलि सूद, कम्युनिटी साइंस महाविद्यालय चौधरी सरवन कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से। सबसे पहले अंजलि जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम
0: जी। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि कम्युनिटी साइंस क्या है और ये अन्य विषयों से किस प्रकार अलग है।
1: प्यारे श्रोताओं, कम्युनिटी साइंस एक ऐसा एकेडमिक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स का मिक्सचर है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसके अंदर हम साइंस, आर्ट्स, डिज़ाइन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फैमिली फंक्शन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन सब प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो ये जो पढ़ाइयाँ हैं ये किसी और प्रोग्राम में एक साथ नहीं की जाती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी साइंस डिसिप्लिन के अंदर ही की जाती हैं
0: जी। और जाना आपसे एक और प्रश्न या समझना चाहेंगे कि 12वीं के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए कौन कौन से स्नातक

0: पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
1: इस क्षेत्र में 12वीं के बाद एक बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम चलता है जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है और वो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कम्युनिटी साइंस कॉलेज के अंतर्गत चलाया जाता है। ये कार्यक्रम 4 साल का है और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों के लिए प्रवेश उपलब्ध है और इसमें प्रवेश लेने के लिए आपको प्लस टू जो है वो साइंस बैकग्राउंड से की होनी चाहिए, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हैं चाहे आप नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, दोनों ही फील्ड्स के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे एक बड़ी बात क्या है कि इस प्रोग्राम में आने के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। जो आपका प्लस टू का स्कोर होता है पीसीबी या पीसीएम और साथ में इंग्लिश, उस स्कोर के बेस के ऊपर आपकी एडमिशन जो है इस प्रोग्राम के अंदर की जाती है।
0: जी, तो आज के समय में कम्युनिटी साइंस को एक उभरते हुए करियर के विकल्प के रूप में क्यों देखा जा रहा है?
1: आप सभी जानते हैं कि जो एक साइंस जैसे फिजिकल साइंसेज है, लाइफ साइंसेज है या इंजीनियरिंग है या कोई और फील्ड है, बहुत सारे बच्चे जो हैं उन फील्ड्स में जाते हैं और हर साल हम देखते हैं हज़ारों हज़ार या मुझे लगता है बेसिक साइंसेज के जो कोर्स हैं फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस, लाखों बच्चे जो हैं उसमें से पास होकर निकलते हैं, जबकि उसमें कोई भी रोज़गार के अवसर बीएससी करने के बाद कोई भी उपलब्ध नहीं होते। बीएससी कम्युनिटी साइंस जो एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है जो कि आज के टाइम में बहुत ही प्रासंगिक हैं। तो मैं आगे भी चर्चा करूंगी कि क्या क्या हमारे विषय रहते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और उसमें क्या रोजगार के अवसर है। एक तो होती है कि नौकरी करनी है किसी और इंस्टीट्यूशन में आप जाके काम करते हैं, और एक ऐसा होता है कि आप स्वयं का रोजगार जो है वो स्थापित करते हैं और लोगों को भी उसमें रोजगार प्रदान करते हैं। तो कम्युनिटी साइंस में दोनों ही क्षेत्रों में भरपूर संभावनाएं हैं और सिर्फ बीएससी करके भी बच्चा जो है वो अपना रोजगार खड़ा कर सकता है और नौकरी भी पा सकता है, इतना उसको स्किल दिया जाता है, इतनी नॉलेज दी जाती है और उसका एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप किया जाता है।
0: जी बिल्कुल, और अगला प्रश्न यही है कि इस पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को कौन कौन से प्रमुख विषय और व्यवहारिक कौशल सिखाए जाते हैं?
1: ये जो बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम है ये जो है अभी नई शिक्षा नीति जो है 2020 में जो लागू की गई है उसके आधारित एक सब्जेक्ट है। ये 4 साल का प्रोग्राम है पर नई शिक्षा नीति में एक ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो लगातार शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, मान लो 1 साल उसने पढ़ाई करी उसके बाद किसी कारण से उसको छोड़ के जाना पड़ता है या किसी और शहर में वो शिफ्ट हो रहा है, तो अब ऐसे प्रावधान है कि वो अपनी जगह से उठ के 1 साल की शिक्षा उसको हम सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स मानते हैं और इंटर्नशिप की भी उसमें अपॉर्चुनिटी 10 वीक्स की रहती है, तो उसके बाद उसको सर्टिफिकेट कोर्स और वो अपना कुछ काम शुरू कर सकता है, और या 2 साल कंटिन्यू करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाता है और अगर 4 साल कंटिन्यू करता है तो ऑनर्स की डिग्री देते हैं। रहे विषयों की बात तो इसमें प्रमुख विषय जो हैं 5 रहते हैं हमारे कार्यक्रम में। इसमें फूड साइंस, न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी, तो हम सभी जानते हैं कि आज का टाइम ऐसा है कि खाने की कितनी महत्ता है, खाने के बिना जीवन नहीं है, तो कैसा खाना खान पान होना चाहिए। हम सभी जागरूक हो रहे हैं, हमें बहुत सारे माध्यमों से पता चलता है कि क्या खाना है, कैसा खाना है, कितना खाना है, रोग हो तो कैसा खाना है, आपको शरीर में मसल्स बिल्ड करने हैं तो क्या खाना है, आपको प्रोसेसिंग करनी है। आपने देखा होगा कितने खाद्य उत्पाद जो है बाजार में बने बनाए पैक्ड मिलते हैं
0: जी,
1: तो उसकी जो प्रोसेसिंग करनी है, उसका प्रसंस्करण जो करना है वो सब, तो न्यूट्रिशन की जानकारी, किस खाने से क्या मिल रहा है हमें, किस पोषक तत्व क्या है उसमें, डाइटेटिक्स कितना, किस किसको कितना खाना है, कैसा खाना खाना है, रोग हैं तो क्या खाना है, स्वस्थ हैं तो कैसा खाना है, छोटा बच्चा है उसको क्या खाना है, प्रेग्नेंट मदर है उसको क्या खाना है, बुजुर्ग हैं उनको क्या खाना है, खेल कूद वाले व्यक्ति को क्या खाना है, तो डाइटेटिक्स की जानकारी और खाद्य प्रसंस्करण।

0: एंड जितना भी पैकेज्ड फूड प्रोसेस्ड फूड आता है उसकी पूरी जानकारी जो है उस विषय के अंदर दी जाती है।
1: जी
0: दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिजाइनिंग। तो टेक्सटाइल मतलब वो भी एक हमारा बेसिक नीड है, वस्त्र, रोटी कपड़ा और मकान जिसको हम कहते हैं ना, तो कपड़ा जो है वो भी एक हमारी जरूरत है जिसको हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। तो टेक्सटाइल क्या है, वस्त्र कैसे बनते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, अलग अलग क्या तरीके हैं कि वस्त्र बनाए जा सकते हैं, फिर कपड़ा बन गया है मान लो, तो उसमें उसको हम सुंदर कैसे बना सकते हैं, उसमें डिजाइनिंग करनी है, उसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, उसको कलर करना है, डाई करना है, प्रिंट करना है, और फिर उसके वस्त्र बनाने, क्योंकि सिर्फ कपड़ा बनाने से उसको लपेट के तो हम नहीं चलते ना, तो
1: बिल्कुल
0: उसको हमें किसी फॉर्म में, वियरेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो वो जो स्टेप्स हैं वो सारे बताए जाते हैं उसके अंदर, डिज़ाइनिंग के पूरे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, क्या एक्सेसरीज हैं, क्योंकि कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे ज्वेलरी है, पर्स है, फुटवेयर है, हेडवेयर है, वो सब के बारे में जानकारी दी जाती है, उसको बनाना भी बताया जाता है, और साथ में इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के भी ऑप्शंस जो हैं वो बताए जाते हैं छात्रों को।
1: जी
0: इसके अगला जो विषय, जो मेन जो डिपार्टमेंट हम कवर करते हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उससे लेकर जब तक मृत्यु हो जाती है किसी इंसान की, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और साथ में कैसे कैसे डेवलपमेंट के फेज होते हैं।
1: जी
0: एक छोटा बच्चा पैदा हुआ वो कोई भी एक्टिविटी खुद नहीं कर सकता, डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, धीरे धीरे वो अपनी बात को कहना सीखता है, उठ के बैठना सीखता है,
1: जी
0: चीज़ों को पकड़ना सीखता है, और फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स सब डेवलप होते हैं। तो वो जो स्टेजेस हैं उनके बारे में जानकारी, किस स्टेज में क्या साइकोलॉजी रहती है किसी भी इंसान की, उसकी बारे में जानकारी, और सोशियोलॉजी, क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं
1: जी जी
0: हम अकेले नहीं जी सकते हैं, तो समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी जो है उसके उसमें दी जाती है। चौथा जो डिपार्टमेंट जिसके बारे में पढ़ाया जाता है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस। तो
1: जी
0: जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे एनवायरनमेंट में, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कैसे हम उसका एक सही उपयोग कर सकते हैं, वेस्टेज भी बहुत होती है तो कैसे हम उस वेस्टेज को रोक सकते हैं, चाहे वो रिसोर्सेज कैसे भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, वो कोई और प्रोडक्ट हो सकता है, तो हर रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ कैसे हो सकता है, कैसे हम बेस्ट चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं किसी भी रिसोर्स से, और कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमरिज्म का ज़माना है और
1: बिल्कुल
0: हर चीज़ उपभोक्ता है हम, हर चीज़ बाज़ार में उपलब्ध है और हम खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं,
1: जी
0: तो कंज्यूमर की क्या अधिकार हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कैसे कंज्यूमर को हम बेटर वे में, एक अच्छे तरीके से उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो है इस विषय के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर एक पांचवा जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो जो भी जानकारी हमारे पास है, हम क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय के अंदर काम करते हैं
1: जी
0: तो उसमें जो हम किसानों से भी बात करते हैं, कृषक महिलाओं से भी बात करते हैं, हम शहरी समाज से भी बात करते हैं, हर तरह के लोगों से हमारा जुड़ाव होता है
1: जी
0: और संबंध रखते हैं। तो जो भी जानकारी जो हम अलग-अलग विषयों में प्राप्त करते हैं उन्हीं उसी जानकारी को कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारा टारगेट ग्रुप है उस तक पहुंचाना, क्योंकि अगर कोई जानकारी हमारे पास है और वो हम दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छी कम्युनिकेशन होना, अच्छे तरीके से अपनी बात को कह पाना, जो सुनने वाला या देखने वाला है उसको कैसे समझ आता है, कैसे चीज़ उसको चाहिए है, उसको उसी तरीके से प्रस्तुत करने की कला जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को।
1: जी और क्या इस क्षेत्र में स्वरोजगार या स्टार्टअप शुरू करने के अवसर भी उपलब्ध हैं? यदि हैं तो कुछ उदाहरण हमारे साथ

0: इस क्षेत्र में जितने स्वरोजगार के अवसर हैं शायद ही किसी और सब्जेक्ट में मिलते होंगे।
1: जी
0: जैसे कि मैंने बताया कि फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, डाइटेटिक्स है, खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण है, फैशन डिज़ाइनिंग है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, आपका डिज़ाइनिंग का फील्ड है, आपका डाइंग है, प्रिंटिंग है, वो है। फिर उसके अलावा आपके साइकोलॉजी के काउंसलिंग सेंटर्स हैं, आप प्री स्कूल खोल सकते हैं, आप स्कूल खोल सकते हैं और उस तरह की सेवाएं दे सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट, जैसे हम रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं,
1: जी जी
0: इंटीरियर डिज़ाइनिंग इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इवेंट मैनेजमेंट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। आजकल जैसे होम स्टेज और होटल मैनेजमेंट और इस तरह का जो इको टूरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसके अंदर सिखाया जाता है। तो और साथ में समाज के लिए हम कैसे अपनी योगदान दे सकते हैं एनजीओ सेक्टर से या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ जुड़ के, तो इसमें भरपूर स्वरोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हैं। आप कोई भी विषय जिसमें आपको रुचि है आप उसमें महारत हासिल करके पूरी जानकारी के साथ उस विषय में स्वरोजगार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप स्कीम्स भी हैं सरकार की, प्रदेश सरकार की भी हैं और जो सेंटर में सरकार है केंद्र सरकार की उनकी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के बाद साथ साथ भी अप्लाई करते हैं और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं उन स्टार्टअप स्कीम्स में। और अगर अच्छा पूरा प्लान उनके पास उपलब्ध है और उनके पास पूरी दिशा के साथ वो कार्य करना चाहते हैं तो उसमें ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं और फंड भी दिया जाता है, तो अपने रोज़गार वो खड़े कर सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर अंजलि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रही हैं हमारे साथ, और हमारे युवा बहुत ही रोचक तरीके से सुन भी रहे होंगे
0: जी
1: और बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। लेकिन क्यों एक म्यूजिकल एक ब्रेक हो जाए।
0: ज़रूर ज़रूर
1: चलिए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा गीत के बाद भी।

0: जी श्रोताओं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आज इस कार्यक्रम में हो रही है और बात हो रही है कम्युनिटी साइंस पर। विशेषज्ञ हमारे साथ है डॉक्टर अंजलि सूद, तो चलिए इनसे बातचीत जारी करते हैं। जी, बात करें हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों की, तो इस क्षेत्र में कौन से प्रमुख शिक्षण संस्थान और विशेष अवसर उपलब्ध हैं हिमाचल के विद्यार्थियों के लिए?
1: सीमा जी, हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही शिक्षण संस्थान है, कम्युनिटी साइंस कॉलेज चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में, जहां इस विषय की शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। हमारे पड़ोसी राज्यों में तो बहुत सारे संस्थान हैं जहां इस विषय पे पढ़ाई की जाती है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षण संस्थान है जो इस विषय में पढ़ाई करवाता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए एडमिशन्स ओपन हैं, और कोई भी बच्चा अगर इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है www.hillagric.ac.in। मैं दोबारा बता रही हूँ, www.hillagric.ac.in, या अगर आपको ये वेबसाइट ना याद रहे तो आप चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर कुछ भी सर्च कर सकते हैं जी। और उसमें आपको जब वो वेबसाइट खुलती है तो उसमें एक ऑप्शन दिखता है, वो फ्लिकर करता रहता है, एडमिशंस 2026, तो उस पर क्लिक करना है आपको। और उसको क्लिक करेंगे तो आपने मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस का जो लिंक है वो ओपन करना है, तो आपका प्रॉस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड हो जाता है। ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 10 अगस्त रात के 11:59 की है जी। तो मतलब आपको 10 तारीख तक इसके लिए अप्लाई कर देना है। और ये जो सब्जेक्ट है, इसकी काउंसलिंग जो है वो 26 अगस्त को कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में 10 से 4 बजे तक खुली रहेगी। जो भी बच्चा इसके लिए अप्लाई करेगा वो वेबसाइट को देख के और लिस्ट में नाम देख के 26 तारीख को कॉलेज में आके पूरे सर्टिफिकेट्स के साथ, और खुद आना होता है बच्चे को, और वो सर्टिफिकेट्स के साथ आए, उसके सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन होती है और फिर एडमिशन प्रोसेस जो है वो आगे चलता है
0: जी। और बात करें आज के युग की, तो डिजिटल युग है, और क्या कम्युनिटी साइंस के विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना करियर बना सकते हैं?
1: जी ज़रूर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स और एस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे डायटेटिक्स है, काउंसलिंग है, और इस तरह की चीज़ें, कोई इवेंट मैनेजमेंट है, उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कोई फाइनेंशियल हेल्प मतलब काउंसलिंग करनी है किसी की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे कुछ प्लान बना कर देना है, फैशन डिज़ाइन के लिए आपको डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं, तो ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और इस तरह की सर्विसेज अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इस पढ़ाई को करते हैं वो ऑनलाइन माध्यमों से भी अच्छा स्वरोजगार अपने लिए बना सकते हैं
0: जी। और अभिभावकों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अपने बच्चों के है ना भविष्य में। तो अभिभावकों में अक्सर ये धारणा होती है कि कम्युनिटी साइंस के क्षेत्र में करियर सीमित है, तो आप इस धारणा को किस प्रकार स्पष्ट करना चाहेंगे?
1: मैं, आपने सही कहा सीमा, कि बहुत सारे अभिभावक ऐसा सोचते हैं कि इस विषय में अभी तक करियर की जो उपलब्धता है वो कम है, थोड़ी सीमित है, पर ऐसा नहीं है। हम अपना कोई, जब हमारे भी कोई प्रोजेक्ट्स या जॉब्स निकलती हैं, हम किसी स्टूडेंट को ढूंढने जाएं पिछले वाले को कि वो कोई खाली है तो हम उसको जॉब में हायर कर लें, तो हमें कोई खाली बैठा हुआ स्टूडेंट नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं एंगेज

0: है किसी ना किसी सेक्टर में, और इतना उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कर दिया जाता है कि अलग अलग सेक्टर्स में वो काम कर सकते हैं बच्चे।
1: जी
0: और अब तो सारे अपकमिंग फील्ड्स हैं, डाइट रिलेटेड सबको काउंसलिंग चाहिए, फैशन सबको चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट सबको चाहिए,
1: जी
0: तो बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जिनके साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं, प्लस अपना भी कर सकते हैं। और साथ में इस प्रोग्राम में एक अच्छी बात क्या है कि 3 महीने की प्रोफेशनल इंटर्नशिप भी ऑफर की जाती है, तो वहाँ पे जाके भी बच्चे सीखते हैं और अपना रोल काम करते हैं।
1: जी और अंत में 12वीं के बाद अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी, जो हमारे ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं उनसे थोड़ा हट के थोड़ा डिफरेंट फील्ड्स के बारे में देखिए। अगर आप क्रिएटिव हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, और आप ज़ील रखते हैं कुछ नया सीखने की, तो ये विषय जो है ये बहुत ही आपके जो भविष्य है उसको उज्ज्वल बनाने की शक्ति रखता है।
1: जी तो हमारे विशेषज्ञ का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों और उपयोगी जानकारी से हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया।
0: धन्यवाद सीमा
1: जी
0: जी।
1: और इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये कार्यक्रम आपके करियर संबंधी निर्णयों में सहायक सिद्ध होगा, मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे युवा मंच के एक और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अंक में।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे किसान व बागबान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी। 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे संगीतकार जयदेव के संगीत बद किए कुछ गीत। 9:30 पर कार्यक्रम पहाड़ों की गूंज आप सुनेंगे। 10:00 कार्यक्रम रहेगा पसंद आपकी गीत हमारे। जी हाँ, सजीव फोन इन ये कार्यक्रम है और 01892224391 ये नंबर मिलाकर आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। समय रहेगा 10:00 से लेकर 11:00 तक। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह सुहानी।

सुविचार के साथ इतिहास में 4 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही ताजा तरीन समाचारों के साथ बात होगी मौसम के मिजाज पर। बारह बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम सुनो सखी में आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें 01892224391 ये नंबर मिलाकर सब सखियां जुड़ सकती हैं कार्यक्रम में। समय रहेगा 12:30।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। नई दिल्ली में आज सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यालय असैन्य सैन्य तालमेल को उत्कृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह कार्य करता है। उन्होंने AFHQ कैडर से अपनी भूमिका से कहीं आगे बढ़कर कार्य करने का आह्वान किया।
1: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिक चिकित्सा अवसंरचना व नवीनतम स्वास्थ्य तकनीक उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां करीब 158 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में जिले में सड़कों के निर्माण व विस्तार पर 591 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना डिपो की 5 इलेक्ट्रिक बसों को ऊना बस अड्डे से सांकेतिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें ऊना से डेरा बाबा रुद्रानंद धाम के लिए शुरू की गई नई इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शामिल है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में इको फ्रेंडली, आधुनिक व टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हरोली में प्रदेश के पहले ई बस डिपो से संचालन शुरू होने के बाद अब ऊना डिपो से भी ई बस सेवा आरंभ हो गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत ऊना जिला को 50, हमीरपुर

0: जयपुर को 35, बिलासपुर को 20 और देहरा को 10 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, आरामदायक व पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में अधिकारियों व कर्मचारियों का अहम योगदान रहता है। सोलन में आज कंडाघाट विकास खंड से नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के तहत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने कहा कि प्रत्येक परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से युवाओं को नशे के अंधकार से बचाने के लिए सहयोग देने का आग्रह भी किया। कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा क्षेत्र में स्थित नौरा खेल मैदान में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना को स्थानीय लोगों ने आसपास उपलब्ध अन्य खाली भूमि पर स्थापित करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र का एकमात्र खेल मैदान सुरक्षित रह सके। स्वयंसेवी संस्था आवाम के लीगल एडवाइजर सौरभ कौंडल ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि नौरा खेल मैदान बचाओ अभियान के तहत 7 अगस्त को संस्था द्वारा एक रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कौंडल ने कहा कि यह मैदान आसपास के लगभग 6 गांवों के युवाओं के लिए खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है।
1: अगस्त को खेल मैदान बचाओ नौरा बचाओ के नारे के साथ एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन कर रहे हैं। मैदान को बचाने के लिए हम इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार का एक विकास का कोई प्रोजेक्ट वहां पर लगाया जा रहा है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार के विकास के किसी भी प्रोजेक्ट के विरोधी नहीं है। हम ये चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार वहां प्रोजेक्ट लगाए। आज के समय में मैदानों की अहम भूमिका युवाओं को नशे से दूर रखने में रहती है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म के इस गीत के साथ।

आवाज है लता मंगेशकर और साथियों की। इस गीत में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

बेमिसाल फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, आरडी वर्मन का संगीत निर्देशन और बोल है आनंद बख्शी के।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

काला पत्थर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, राजेश रोशन का संगीत निर्देशन और बोल थे साहिर लुधियानवी के, और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

आराधना फिल्म के इसी गीत के साथ थे। आज का ये कार्यक्रम सुरमई सांझ अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैणा जो ग्राम सेवक दी राम राम कने किसान साथियों अज मेरे कने न गुलाबो भैन जी राम राम
1: राम राम ग्राम सेवक जी राम राम कने हाड़े जितने भी श्रोते न सुनने वाले तेना सब नी जो मेरी तरफा ते भी राम राम कने दिखा ग्राम सेवक जी अहां आई बैठे ट्याले पर कने दिखा ट्याले दी रौनक अज जड़ी है बरखा थोड़ी घट हुई है कने दिखा रौनक जड़ी है ट्याले पर सै बड़ी छैल लगी हुई इस वेले है ना
0: जी जी बिल्कुल तो हां ठीक गला दे
1: जी
0: पर ना ये बीणियां वाले जड़े अंडा दे ना अखै वखै इना बड़ा भारी तंग कीत्या
1: जी बिल्कुल
0: बीणियां वाले मतलब समझाए ना तुम
1: समझी मैं तो समझ गई ना ग्राम सेवक जी दिखा हाड़े साड़े जितने भी ग्राम जड़े वासी है ना तेने पता लगी है होना कि बीणी वाले मतलब क्या है ना कहे जी हां ग्राएं दे विच रहंदे है ना
0: बड़े भारी मच्छर तंग करा दे कने दिखा पुराने सियाने क्या कर दे ना मच्छराएं ओ भगाने वास्ते जड़े साड़े उपले नहीं हुंदे
1: जी बिल्कुल
0: गोबर दे उपले है ना गोठू जिसी गलांदे
1: हां जी हां जी
0: तीस दी धूनी पांदे कने ए नठी जांदे हे
1: हां
0: कने हुण तां दिखा महाराज ए जिहड़ियां चीजां ना ए लगभग खत्म ही हो चलियां
1: बिल्कुल दिखा डंगरें जैलू संजा भ्यागा मच्छर लगता हा तां वी आहां जड़ा गा होंदा हा जड़ा छम्मण पाया होंदा हा ना हां तिसी मिलाई करी गुब जियां तो गलाया उपले जो जलांदे हे कने सै इक इतनी अच्छी धूनी बनी जांदी कि 1 मिंटा च जड़ा सै मच्छर जड़ा सै दूर होई जांदा
0: हा नठी जांदा हा मक्खी मच्छर कने हुण तां मिंजो लगदा बई गोठुए दा इंतजाम करना ही पौना ट्याले पर है ना
1: जी बिल्कुल कहे जी दिखा अपनी साफ सफाई जड़ी है सै बड़ा जरूरी है साफ सफाई ते ही हाड़ा जड़ा शरीर है सै तंदुरुस्त रहंदा है ता ही हाड़े कम कार जड़ा सै होई सकदे ने ठीक रूप
0: बिल्कुल
1: ने
0: बिल्कुल तो ठीक गलाया गुलाबू जी कने दिखा चलो ये तो अहाँ अगली बारी इंतजाम कर ही लेना इन्हें दड़ाने का बगाने का पर जड़ी अज अहाँ गलबात करनी है भई सह भी बड़ी महत्वपूर्ण गलबात है ना
1: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी अज कार्यक्रम मौजां ग्राइंदी विच अहां गल करनी है औषधीय पौधे की खेतीबाड़ी अहां कियां करनी है कने कुन कुन गल्लां अहां ध्यान दे विच रखनी है ऐसा खेतीबाड़ी जो करने ताई है ना ता जियां कि हड़े किसानां जो पता है कि अज दे टाइम दे विच औषधीय पौधे की खेतीबाड़ी जड़ी है सै किसानां ताई एक आय दा अच्छा स्रोत जड़ा सै बना करदी है तो औषधीय पौधे की खेती ताई उपयुक्त जलवायु उपजाऊ जड़ी भूमि होना चाहिए है कने जल निकासी वाली मिट्टी जड़ी से होना

0: जरूरी है। इसदे सोगी ही किसान साथियों, खेती शुरू करने ते पहले खेत दी अच्छी तरह तरीके ने जुताई करी के जल सारे खरपतवार नष्ट हो जाते तो गोबर दी सड़ी या फ्री कंपोस्ट खाद जी हाँ जो मिलाना चाहिए है। कने पौधे दी किस्म दे अनुसार बीज या पौधे जड़े से लगाने चाहिए हैं।
1: जी जी,
0: प्रमुख औषधीय पौधे जियाँ कि तुलसी हुई है, अश्वगंधा हुई है, एलोवेरा हुई है, गलोए, आंबड़ा या फिर शतावरी, ऐसे ऐसे पौधे जड़े से शामिल हैं, है ना?
1: जी जी बिल्कुल, कई तरह के औषधीय पौधे जड़े से साढ़े आखे पाखे भी मौजूद होंगे गुलाबो जी, पर हाँ तो इन्हें पहचान नहीं करी पाते ना।
0: जी बिल्कुल।
1: तां देखा अगर साढ़े बजुर्ग सांझो किसी औषधीय पौधे के बारे च दसते हैं या कोई ऐसी पहचान दसते हैं तो तिना की जी इस पहचान करी के तिना का उपयोग जरा इस बुजुर्गों भी आह अनुभव लेके देखी सकते हैं ना,
0: बिल्कुल ग्राम
1: भाई तिना का संरक्षण भी करी सकते हैं ना।
0: जी बिल्कुल। कने इन पौधों की अच्छी वृद्धि ताए समय समय पर पानी का ध्यान रखना है। कने खेत जो खरपतवार मुक्त रखना जड़ा से बड़ा ही जरूरी है। जैविक खाद कने जैविक कीटनाशकों का प्रयोग हाँ इस पौधे विच करन ता ज़्यादा फायदा जड़ा से रहा है, कजो जे इसने जड़ा से औषधीय गुण जड़े इस आते हैं सह सुरक्षित रहते हैं। इसके सोगी ही रोग कने कीटों का नियमित निगरानी रखना जड़ी से बड़ा जरूरी रहती है।
1: जी
0: कने
1: बिल्कुल,
0: जड़ा
1: ठीक गल है।
0: रोग एक बारी पई आंदा है तो इहदे विच निगरानी जड़ी करके हाँ उपचार करना भी जरूरी है।
1: जी
0: औषधीय पौधे की खेती किसानां दी आय दा एक मुख्य साधन है। इसकी मांग देश विदेश दुनिया च लगातार बड़ा करती है। ये खेती पर्यावरण ताई भी बड़ी ही लाभदायक कने घट लागत कने अच्छा लाभ प्राप्त प्रदान जड़ा से करा करती है।
1: जी बिल्कुल। तो गुलाबो जी दिखा वैसे भी अजकल बरसात का मौसम है ना, और बरसात के मौसम च एक तो चलो अह गला दे भी औषधीय पौधे जड़े से जरूर लगाने ना, है ना,
0: जी बिल्कुल।
1: पर इस दे कने कने देखा अजकल असा कोई भी पौध रोपण करते हैं चाहे सह औषधीय पौधे है या फिर कोई छायादार पेड़ वृक्ष या फिर कोई फलदार है ना
0: जी बिल्कुल।
1: पेड़ पौधा कोई भी है, कोई भी पौधा रोपण है अगर अहाँ इस महीने जड़ा ऐसा करते हैं तो तिसी जड़ा ऐसा बड़े अच्छे तरीके ने तिसकी बढ़वार होंगी है, कने आने वाले समय च जड़ा ऐसा है सानू बड़ा फायदा दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी, बड़ी अच्छी गल तो हाँ दसी है। कने हाँ इन्हें छोटिया छोटिया गल्ला दा ध्यान करना है, कने जागरूक बनना है, कने जागरूक होई के कम करने ना, है ना?
1: जी
0: जी
1: तो देखा इशारा सानू लोग गीत दा हुआ करता क्योंकि टियाले पर जड़ा ऐसा काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते संझा दे वेले है ना,
0: जी
1: कने रौनक मेले वास्ते जड़ा ऐसा इशारा हुआ था, पर अहाँ एक संदेश जड़ा ऐसा कार्यक्रम च शामिल करना है, कने तिस ते बाद सुनना एक प्यारा दिया लोकगीत।
2: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
3: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
2: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।

0: भाई वाह जी वाह, दिखा गुलाबो जी कितना बांका लोकगीत था, कने पुराने लोकगीतां दा झनकार ही बड़ी बांकी होंदी है ना।
1: जी बिल्कुल ठीक गला दे तो हम ग्राम सेवक जी, लोक गीत हाड़ी संस्कृति हाड़ी बोली दा एक अभिन्न अंग है। हाँ कुथी भी इन्हें जो सुनी लैन तो अपने देश की अपने प्रदेश की जी से झलक सामने जी से चली होंगी है ना।
0: बिल्कुल, कने दिखा लोकगीत बिच जियां कि बंजारे जड़े से पहले बंगड़ियां लेके घर घर जांदे थे है ना,
1: जी
0: कने बड़े चाव कने साढ़े ग्राउंड दियां जड़ियां महिलाएं न है ना, से
1: जी
0: कितने चाव कने खरीद दियां थियां।
1: बिल्कुल,
0: पर
1: खास करी
0: हुन
1: आज
0: जड़ा
1: जड़ा
0: जी
1: सावन दा महीना जड़ा
0: जी
1: सा शुरू होया है ना, सावन
0: बिल्कुल
1: दा सोमवार है, कने इस महीने काफ़ी हाड़ियाँ जड़ियाँ औरतें ने सह हरी कने लाल चूड़ियाँ जड़ियाँ सह पहनना पसंद कर दियाँ, कने बड़े शौक ने पहन दियाँ ना।
0: जी बिल्कुल, कने दिखा आने वाला जड़ा समय ऐसा मौसम जड़ा ऐसा त्योहारां दा है ना, कोई
1: जी
0: करवा चौथ होई या कोई रखड़ी आई है ना, तो ये बंजारे जड़े ऐसे रखड़ियां लेके भी घर घर घूमदे, फिर करवा चौथ दा सामान भी आंदा है ना, कने सावन मास दा भी जड़ा ऐसा तो बोला दे वे जियां चूड़ियां वगैरह जड़ा ऐसा भी बेचते हैं, तो ये बड़ी एक छैल परंपरा रही है पहले टाइम च, पर हुण जड़ा ऐसा है कुछ एक इश्यू अहां देखा जाए तो थोड़ा घटी गई है प्रचार इसका। इसका कारण यह है कि दिखा बाजार जड़े ऐसे हर गांव च जड़े ऐसे बाजार बनी गए होने ना,
1: जी बिल्कुल
0: तां ये भी एक बंजारे दे घाट होने की जड़ी ऐसे संभावना रही है।
1: बिल्कुल ग्राम सेवक जी, कने दिखा जालू बंजारा ग्रां च बंदा था तिस ने जड़ा सा हाँ खरीदारी करते हे तिस दा मजा कुछ अलग ही होंदा हा, है
0: अलग
1: ना।
0: ही होंदा
1: जिया तिन्नी आवाज देनी कि भई ले लिया
0: चूड़ियां
1: कुछ
0: ले
1: ले
0: लिया है
1: चूड़ियां
0: ना।
1: ले लिया, ता
0: हाँ
1: दिखा 5-7 भैणा झट करी करी बाहर निकल दिया, कने दिखा झट मोल भाव जड़ा सा करना लग दिया कि भई मैं 10 नहीं देने मैं ता इतने देने है ना। ता
0: जी
1: मतलब ये मजा जड़ा सा ग्रां दे विच होंदा हा, कने कोशिश हाँ यही करनी है कि ऐसिया ऐसिया कोई ऐसी हाड़े ग्रां दे विच ऐसे ऐसे रिवाज हली तिकर भी हन ता हाँ जो इन्हां दा जड़ा सा सम्मान करना चाहिए है ना।
0: जी और वैसे भी देखा पहले क्या होंदा है, बाजार नहीं होंदे है ना, तो महीने च एक दो चक्कर सही लगांदे है, तो महिलाएं भी बाजार नहीं जानियां ही हैं, तो से बड़ा एक उत्साह होंदा हा महिलाओं विच कि भई देखा ते ना होना कने यहाँ समान खरीदना है।
1: जी बिल्कुल
0: और भी कई तरह की परंपराएं हैं जड़ियाँ जे गाँव च अली तक भी जड़ा ऐसा तिना बड़ा चाव कने बड़ा जड़ा ऐसा उत्साह रहिंदा है ना।
1: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी, कने इस गल्ला ते एक मैं होर गल गलाना चाहती कि इसका एक होर फायदा ये रहा है कि भाई अहाँ बाजारे जल जाते ना तो अहाँ दो चीज़ा लैनिया होनी है तो अहाँ 5 चीज़ा जड़ी असै खरीदी करी घर आई पुजते हैं। हाँ जो होर भी ऐसी चीज़ा दुसी आदि जिन्हों का कोई हाँ जो जरूरत नहीं आती कने अहाँ ले लेंदे ने, लेकिन
0: जी
1: जलू घर पुजते तो बोलते कि ओहो ये अहाँ लेना ही नहीं था, तो एक एक पैसे की एक किस्म की जिसे गुलाई सकते
0: बचत भी,
1: बर्बादी होती थी है
0: हाँ
1: ना।
0: बिल्कुल, कने घरे आए के जड़ा अहाँ समान लेंदे से बिल्कुल सीमित समान लेंदे कने

0: पैसे की बचत होंगी है ना।
1: जी बिल्कुल
0: तो देखा गुलाबो जी, तुहां जियां कि श्रावण महीने की गल करा देना, तो मुझे भाई भोले शंकर की जड़ी ऐसे थोड़ी स्तुति दी जड़ी ऐसे मन करा दा है ना,
1: जी
0: कने
1: बिल्कुल
0: लोक भजन सुनने जड़ा ऐसे मन करा दा,
1: जी बिल्कुल
0: तो बाकी भी लोग जड़े ऐसे इशारा करा देना।
1: जी बिल्कुल अहाँ सुनना है, ये लोक भजन संझा दा बेला है, श्रावण महीना है, कने शिव जी दा भजन अहाँ सुनना है, देरी नहीं करनी, कने सुनना है ये भजन।
0: जी।

0: जी गुलाबो जी दिखा लोक भजन जड़ा ऐसे हाँ सुनिया कने भाई उम्मीद करते हैं कि साढ़े सारे श्रोता जड़े से भक्ति च जड़े से लीन होइए होने ना।
1: जी बिल्कुल लीन होए होने, कन्नै जितनी भी दिनें दी थकान थी सै दूर होई होनी। कन्नै दिक्खा ग्राम सेवक जी, अजकल जेह्ड़ा बरसाती दा टाइम ऐ, कन्नै अजकल हाड़ियां जेह्ड़ियां बहनां न सै खेतीबाड़ी कम्मै ते थोड़ा देहा दिनें ओह् आराम होंदा दिसदे है ना। तां इस बेल्ले कुछ इक ग्रामवासी जे होंदे न सै कुतकी मेले लग्गे हो, कुतकी यात्रा लग्गियां न, तां ऐसे ऐसे कम्म करदे। कन्नै कुछ इक किसान भैनां जेह्ड़ियां सै बेल्ले टाइमें दा फायदा लैनियां, कन्नै मता कुछ जेह्ड़ा सै अपने हत्थां नै बुनाई होई गई, कढ़ाई हो गई, या फिरी होर केई चीजां अजकल जेह्ड़ा सै बनदा, जियां पोचलां दे बिन्ने साढ़े जेह्ड़े दादी जे बनांदे हे, तां तिन्ना ही बिन्ने जो अजकल जेह्ड़ा सै दिक्खा काफ़ी जेह्ड़ा सै मान सम्मान गलाई सकदे न, तिन्ना ही ओह् मिला करदा। कन्नै इक अच्छी कीमत जेह्ड़ी सै मिला करदी ऐ, बजारां दे विच भी बिका करदे न। कन्नै इक अच्छा इक व्यवसायिक कम्म जेह्ड़ा सै साढ़ियां भैनां करा करदियां न, केई महिला जेह्ड़े समूह बने उन तित्थू प्रशिक्षण दित्ता जांदा ऐ। कन्नै दिक्खा तिस प्रशिक्षण दे विच खान पान ते ले करी सिलाई कढ़ाई जेह्ड़ा भी औरतां ताईं जरूरी कम्म कार रहिंदे, छोटे छोटे अपने ताईं अपने घरै दे ताईं सै सब कुछ जेह्ड़ा सै सिखाया जांदा ऐ। कन्नै साढ़ियां भैनां बड़ी चढ़ी करी भाग भी लैंदियां न, है ना।
0: जी जी बिल्कुल तुम ठीक गलाया भाई। दिखा पहले क्या होंदा हा कि हाथे ने बुने जड़े स्वेटर कोटियां थी ना तिना दा प्रयोग करते थे है ना गां
1: जी
0: स्याले
1: बिल्कुल
0: वास्ते जड़ा ऐसा ऊनी तैयार करना शुरू करी दें। इस ते अलावा तुह ठीक बोला दे घरे दे बिन्ने होंदे हे है ना कने
1: जी
0: कई चीज़ा ऐसियां जियां पहले हुण तां दिखा जी ऊना दा कत्तण कताण दा थोड़ा घटी गया खत्म ही होई है लगभग पर ये कम भी जड़े से साढ़े बजुर्ग करते थे महिलाएं करदियां थियां कने उनसाण उनसाणा है ना पटुआ दा काम
1: जी
0: बड़ा कुछ
1: बिल्कुल
0: होंदा था पुराने
1: बताओ कुछ
0: टाइम
1: काम
0: च
1: होने
0: है
1: आता
0: ना।
1: है। जी
0: पर
1: बिल्कुल
0: हुण जड़ा ऐसा थोड़ा थोड़ा बदलाव होआ करदा इन्हां चीज़ां च कने ये चीज़ां जड़ियां इसे कटा करदियां लेकिन इन्हां दा जड़ा ऐसा अगर हाँ उपयोग देखा जाए तो एक गरड़ू या पट्टू जड़ा भी है अगर हाँ इसका पलोड मारी लीए है ना ता या फिर तीसियो अहाँ अपने घटने बिछाने ले लीए तो रजाइयां दी जड़ी ऐसे जरूरत नहीं रहती
1: नहीं रहती बिल्कुल
0: स्यालियां च है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल
0: ता ये देखा जी पुरानियां चीज़ां ने इन्हां दा जड़ा ऐसा अपनी ही एक पहचान है अपना ही एक महत्व है।
1: बिल्कुल घरे दा बनिया कोई भी उत्पाद है ता तिस जो लोक अजकल जड़ा सै तोपी तोपी जड़ा सै खरीदे न लैंदे न, कने शौक ने जड़ा सै खरीदा करदे न, ता आने वाले टाइम दे विच हाँ जो फिरी ते एक कम अहाँ कोशिश करन अपने घरां दे विच, मता नहीं ता थोड़ा थोड़ा ही अहाँ कोशिश करन अपने ताईं कोशिश करन, ता इन्हां चीज़ां दी वैल्यू फिरी ते थोड़ी थोड़ी जड़ी सै झुकाव जड़ा सै दुसा करदा है। इसे सोगी ही हाड़े इस वेले दिखा नाशपाती लगदी है काफ़ी, पिछे आंबले जड़े से काफ़ी ग्राएं दे विच तुहानू पता है ग्राएं दे विच काफ़ी जड़ी मात्रा दे विच होंदे न, तां तिदा भी किसान वाणा कई कुछ आंबले दी कैंडी होई, मुरब्बा होई गया, अचार होई गया, या फिर नींबू है इस वेले तां काफ़ी मात्रा दे विच जो नवे नवे तकनीकां नवे नवे जड़े तौर तरीके तिना जो अपनाई करी जड़ा सै इक बेहतर जड़ा सै जीवन शैली अपनी बनाई सकदे न, है ना।
0: जी बिल्कुल तुम ठीक लाया आत्म निर्भरता दी तरफ जड़ा ऐसा है साड़ा गांव आज बधा करता है ना। और अपने गांव विच ही कई तरह दे अपने कृषि ने जुड़े हुए या फिर खेतीबाड़ी पशु पालन बागवानी ने कई जड़े से काम धंधे जोड़ी के साढ़े भाई बंधु करा कर दे कने आत्मनिर्भर बना कर दे ना।
1: जी बिल्कुल, कन्नै इस वेले बरसाती दा टाइम है, कन्नै अहाँ कोशिश करनी है कुतै भी तुहानू खरातड़ियां दे विच या फिर कुतकी उत्थी खाली जगह दुसदी है तुहाड़ी अपनी है, तां तुसां इस दे विच पौध रोपण करी सकदे न। कन्नै पौध रोपण करना ही जरूरी नहीं है, इस दे

0: हाँ जो एक दो साल जड़ा है तिसदा ध्यान भी रखना जरूरी है ता ही से पौध जड़ा से बड़वार तिसदी हो सकती है। कल जे देखा हाड़े जड़े आवारा पशु हैं कई बार यहाँ तेना जो घासणिया दे विच छड़ी दे ता से जड़ा से ते जो नुकसान करी दे ना
1: जी
0: ता
1: जी
0: तिदा पूरा तैयारी जड़ी से करनी है जी हाँ पशुओं ते बचाने ताई कीड़न वगैरह जड़ा से तो हाँ लाई सकते हैं या फिर ही होर कोई समाधान तो अंजवल है तो सह करी सकते हैं। कन्ने पौधे की देखभाल खाद पानी ये सारा जड़ा से हाँ जो जालू तिकर से तीसरी बढ़वार ना हुई है तालू तिकर ध्यान रखना जड़ा से जरूरी है।
1: जी बिल्कुल। कहने दिखा आजकल जड़ा ऐसा वन महोत्सव जड़ा ऐसा मनाया जाए करता है ना, ये पूरा महीना जड़ा ऐसा वन महोत्सव दे तौर पर जड़ा ऐसा मनाया जाए करता है। और इस बीच ता हर जड़ा ऐसा गांव वासी हर देश वासी जड़ा ऐसा है एक एक पौधा लगाने दी जड़ी ऐसा संकल्प लिया करता है और लगा भी कर देना। कहने पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय जड़ा ऐसा है खूब सारा पौधा रोपण जड़ा ऐसा साढ़े भाई बंधुओं ने करना है।
0: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी कार्यक्रम है मौजा ग्राई दियाँ कने इन्हें छोटियां छोटियां गप्पा कने जागरूकता कने जड़ा से अपनी साफ सफाई कने ही अहाँ कार्यक्रम दे विच अग्गे बढ़ना है कने चलना एक लोकगीत की तरफ।

0: इसी लोक भजन कन्नै गुलाबो जी साढ़े कार्यक्रम दा समय जिहड़ा ऐ ऐसा संपन्न होआ करदा है
1: जी।
0: जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा बिपन कुमार और कार्यक्रम प्रस्तुति जतेंद्र पाल सिंह। हुण अपने किसान बागवान भाई भैणां ते लैंदे ने अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से, माफ कीजिएगा, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई बहन कने होर जितने भी श्रोते हैं तिना सभी जो गुलाबो दी तरफा ते राम राम किसान साथियों तुहां जो पता है अज टाले पर ग्राम सेवक जी एक बार फिर ते राम राम
1: जी राम राम गुलाबो जी तुहां जो भी राम राम कने सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई बहना जो भी ग्राम सेवक दी राम राम कने एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं असां टाले पर ढेर सारी जानकारियां मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोग गीत लेकर है ना
0: जी बिल्कुल
1: देखा जी अहां काफ़ी सारी जड़ी जानकारियां लेकर आते हैं लेकिन सब तो पहले अहां गल कर दें अज की गलबात
0: जी बिल्कुल
1: और अज की साड़ी जड़ी गलबात है सह है अहां गल करनी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे च
0: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी दिखा किसान साथियों यही योजना जड़ी है 2015 जो जड़ी से शुरू की गई थी कने इसका उद्देश्य युवा जड़ा हड़ा वर्ग है उन्हें जो उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दे करी तिना जो रोजगार योग्य बनाना कने स्वरोजगार दे अवसर जड़ा से बढ़ाने हैं
1: बिल्कुल तो ठीक लाया अगर साड़ा युवा जड़ा ऐसा है तिसियो सही दिशा शिक्षा और कौशल दिते जाए ना तो देश की तरक्की च बड़ा योगदान सह दे सकते हैं ना
0: जी बिल्कुल
1: और इसी गल्ला च ध्यान च रखी करी जड़ा ऐसा भारत सरकार ने ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जड़ी ऐसा शुरू की थी और इस योजना का जड़ा मुख्य उद्देश्य है जी तो दसा दे भी युवा जड़ा ऐसा तिसियो अलग अलग क्षेत्रों च जड़ा ऐसा प्रशिक्षण देना कने तिना जो आत्मनिर्भर बनाना है
0: जी बिल्कुल
1: और ये योजना जी इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जी इसे चलाई जाया करती है इस योजना के माध्यम से लखा युवा जड़े इसे मुफ्त प्रशिक्षण जड़ा इसे लै करते हैं और इस योजना के अंतर्गत जड़ा इसे बेरोजगार युवा जो रोजगार ताई तैयार करा करते हैं कई बार ऐसा होंगे कि युवा साढ़े पढ़े लिखे तो होंगे पर तिना जो व्यवहारिक ज्ञान जड़ा ऐसा सह नहीं होंदा इस वजह से जड़ा ऐसा तिना नौकरी मिलने च थोड़ी कठिनाई आती है और ये योजना तिना युवा जो उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देंदे हैं और तिना जड़ा ऐसा आत्मनिर्भर बनाते हैं
0: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी कने इना जो योजना के तहत ही इना युवा जड़े युवा वर्ग है इना जो मान्यता प्राप्त

0: प्रशिक्षण केंद्र ते जड़ा से प्रशिक्षण दिता जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर मूल्यांकन कने प्रमाण पत्र भी दिता जाता है। इस दे सोगी ही विभिन्न क्षेत्र जिया कि आईटी, स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पर्यटन आदि प्रशिक्षण जड़े से भी दिते जाते हैं।
1: बिल्कुल, कने अगर हम महिलाएं की गल करिए तो दिखा सिलाई, ब्यूटी पार्लर या और भी जड़े छोटे छोटे व्यवसाय हैं तिस महारत हासिल करवाई जाए कर दी है और साड़ी जड़ी युवा पीढ़ी है से आत्मनिर्भर बना कर दी है और अपना व्यवसाय जड़ा से करा कर दिया ना।
0: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी, कने इस योजना का लाभ ये हुआ करता है कि युवा दे विच जड़ा सा आत्मविश्वास जड़ा सा बड़ा करता है, रोजगार प्राप्त करने ताई जड़ी सा संभावना ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी सा बड़ा कर दी है ना।
1: बिल्कुल,
0: कने रोजगार शुरू करने दे विच भी योजना के तहत जड़ी सहायता दी जाती है। देश के आर्थिक विकास दे विच जड़ा सा एक योगदान मिलता है
1: जी। और गुलाबो जी, अगर हाँ गल करिए इस योजना का लाभ लेने वास्ते जड़े से कौन कौन युवा जड़े से पात्र हैं, तो सब तो पहले तो आवेदक जड़ा से भारत का नागरिक होना चाहिए, कने आवेदक की आयु जी है 18 से 35 साल के बीच होना चाहिए है, आवेदक बेरोजगार होना चाहिए है यानी कि इस वाल बेरोजगार का प्रमाण पत्र होना चाहिए है ना,
0: जी बिल्कुल।
1: और आवेदक वाल आधार कार्ड कने बैंक खाता होना जड़ा ऐसा भी बड़ा जरूरी है। और इस योजना का जड़ा ऐसा लाभ लेने ताई या आवेदन करने ताई उम्मीदवार जड़ा ऐसा अपने आधिकारिक भारत सरकार दे जड़े ऐसा पंजीकरण जड़ा ऐसा करी सकते हैं और इसके अलावा अपने नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र जड़े भी हैं तिना च जड़ा ऐसा संपर्क करके इस योजना वास्ते अपना नाम दर्ज करवाई सकते हैं।
0: जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी, ये थी अज दे गलबात दे तहत जड़ी सै जानकारी है ना। ता हुण अहां कार्यक्रम खेतीबाड़ी दे विच अगे बढ़ना है, कने सुनना है प्यारा दिया लोक गीत
1: जी।

0: जी गुलाब जी दिखा बांका दिया लोक भजन जड़ा ऐसे हाँ सुनिया कहने हूँ जड़ा ऐसे हाँ कल बात जानकारी दी करनी है।
1: जी बिल्कुल जी बिल्कुल ग्राम सेवक जी, हाँ भेंट वार्ता देते हैं तो जड़ा ऐसे जानकारी सुननी है, कने देरी नहीं करनी है, कने सुननी है जानकारी।
2: किसानों कन्नै तुहाड़ी मुलाकात करांदे रहिंदे तां अज जिहड़े साढ़े टियाले पर पधारे हन शालनी चौधरी जी जिहड़े कि एक महिला किसान हन आवा इन्हां कन्नै गल करदे कन्नै कुत्थों दे रहने वाले ने इन्हां ते पता करदे। शालनी जी तुहाड़ा साढ़े टियाले पर स्वागत है।
3: नमस्कार जी, मेरा नाम शालनी चौधरी है, मैं बगलिए दे रहने वाली है,
2: जी
3: कने खेतीबाड़ी ने जुड़े हुआ।
2: बिल्कुल,
3: हाँ
2: तां
3: जी,
2: सब ते पहले तां अहां तुहाड़े ते जानना चाहांगे भई तुहाड़ी जमीन कितनी है।
3: साड़ी जमीन है जी कोई 25 कनाली,
2: अच्छा जी,
3: 25 कनाली जमीन है, तो थोड़ी देर जी है तो जी खरैतली खरूतली है ना,
2: जी
3: कने बाकी जी आल बहन दी है सारी।
2: अच्छा जी, तो लगभग मतलब अहाँ ये समझी के चलिए भी 15-20 कनाली जी साल बहन
3: हाँ जी,
2: तो इस विच तुसां कौन कौन दी फसलां जड़ियां से अजकल दी अगर अहाँ गल करिए तो कौन कौन फसलां लगाइया इस टाइम।
3: देखा जी हुण तां कणका सीजन चलिया,
2: हाँ
3: कुछ कणक बाहती है हाँ,
2: अच्छा जी
3: ठीक है जी, गाय रखी हैं, कुछ जौ वगैरह बाहती,
2: जी
3: जौ भी बांधे हाँ, अलसी भी बांधे,
2: अच्छा जी,
3: अलसी भी बाहती, जौ भी बाहते, गाय वास्ती जेड़ा बसरी में चारा है
2: हाँ
3: सह भी वाहीता, कने कुछ आलूआं वास्ती रखी ली हो, कुछ प्याजा वास्ते, प्याज भी हम बड़ा ज़्यादा लगाते,
2: जी,
3: लसन भी ज़्यादा लगाते,
2: जी
3: सब्जी सारी लगाते मतलब।
2: बिल्कुल, थोड़ा जो बगली इलाका है तो इस बीच तो हाँ

0: काफ़ी समय ते सुनते रहते भी प्याजा के खूब उन्नत किसान हैं इतों के। कन्ने इस कन्ने कन्ने अह भी जानना चाहेंगे भी ये जरा जड़ी भी फसल बांधे तो इसका तो बीज कुत्ते उपलब्ध होंगे।
1: देखो जी, पहले तो ये घरे दे अहाँ घरे दे बीज कढ़ते थे,
0: हाँ जी
1: जल हाँ कोई जानकारी नहीं होंगी ही कि अहाँ बीज कुते लाना, अटी अटी अहाँ सही बीज लाना तो पैदावार थोड़ी घट होंगी ही।
0: जी
1: उसके बाद सज जरा अहाँ मतलब एग्रीकल्चर ते अहाँ पता किया कि भी है, सह कैंप भी लगाते रहे एग्रीकल्चर वाले भी,
0: जी
1: तो तीन अहाँ जो जागरूक भी किया, तो हाड़े जो किसान हैं बेचारे सह गए कहते तीन हूँ जरा सह बीज जरा सह तिथु ते ले लेंदे, कन्ने खेतीबाड़ी जी पैदावार सह बड़ी छैल होंगी। हूँ पूछा मैं तभी तो है
0: अच्छा
1: ना
0: जी,
1: कि बड़े किसान खुश हैं।
0: तो इस विच तो हाँ ये दसा भी जड़े थोड़ी खेतीबाड़ी च सहायता कौन कौन करा करदा।
1: खेतीबाड़ी च सहायता साढ़े इं है ना कि जेड़े साढ़े एग्रीकल्चर वाले हैं
0: जी जी
1: सह समझो मतलब टाइमे टाइमे दी मतलब हर एक चीज़ देंदे, कने किसान लिया दे कने बड़ा भारी फायदा है सते। अगर किसान चाहन तो किसान बड़ा बड़ा किसान जेड़ा सा बड़ा अमीर आदमी बनी बना दे अजकल, कने बनी है कने
0: जी
1: अहाँ बड़ा ज़्यादा फायदा लिया इसते।
0: अच्छा जी, तो इस विच जी तुम दस्या कि पशुधन भी तुसा पालिया, तो पशुधन च क्या क्या पालिया।
1: पशुधन जी हड़ियाँ दो गाय रखियां हाँ,
0: अच्छा जी
1: दो गाय रखियां कने अहाँ दूध भी बेच दे अहाँ घी भी बेच दे
0: अच्छा जी
1: कने घी अपने वास्ते भी रखिया कने इस टाइम भी साढ़े वाले मतलब एडवांस, क्योंकि गाय जल उगा सुकू आँदी
0: जी
1: तो दूध नहीं होंगे घर है, तो घी जरा 8-10 किलो हाँ एडवांस
0: अच्छा आपू तो रखे
1: आपू ताई
0: होंगे,
1: रखे
0: ठीक
1: होंगे,
0: है
1: कने जरूरतमंद हुआ तो हाँ सेल करी भी देंगे कोई
0: जी बिल्कुल।
1: एमरजेंसी। जी हाँ
0: तां
1: जी
0: गल ये है भी पशुधन जड़ा ऐसा खेतीबाड़ी कन्नै जुड़िया एक धंधा है, कन्नै इसी सौगी सौगी चलाना जड़ा है खेतीबाड़ी कन्नै जड़ा ऐसा किसाने और सहूलत जड़ी सा मिलती
1: देखा
0: है।
1: जी, पशु पशुआ पालने ने सानू बड़ा भारी फायदा, कई
0: जी
1: फायदा कि अहाँ खाद खाद
0: जी
1: अहाँ मुल्ला नहीं लेनी, पहले अहाँ 16-12-32-16 पाते हे
0: जी जी
1: तो 30 ते जड़ी सा पैदावार तो जितनी मर्जी ले लिया, लेकिन बीमारियां भी उतनियां बीमारियां कन्ने लगदियां थी कन्ने।
0: बिल्कुल
1: हूँ अहाँ क्या करा दे कि तुसी अहाँ पिछे करी त्या, अहाँ जितना भी साड़ा गोहा आंदा है खाद
0: जी जी
1: अहाँ माली चपाई करी या भी उंजा भी मतलब पिट बनायो,
0: जी
1: सरकारें तरफते भी बड़ी सुविधा मिली है लोगों कन्ने
0: जी जी
1: सांझो भी मिली हैं, तो अहाँ उन जरा सा गोबर है मतलब बिल्कुल गलिया गोवा जरा
0: जी
1: ऐसा हाँ
0: केंचुआ
1: बिल्कुल
0: खाद
1: हाँ
0: जी
1: कैंचुआ खाद बनाई के उन ना खेतों च पा दे सांझो, मतलब एक बीमारिया से बचाव भी हुई आ
0: जी
1: कने पैदावार भी अच्छी हो दी कने
0: बिल्कुल
1: हाँ बिल्कुल बीमारियों से बची है क्योंकि रोग ज़्यादा लगी है लोगों।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो गल ही है दिखा शालनी जी भी काफ़ी खेतीबाड़ी तो हाँ काम करा करते, अजकल पोलियो हाउस का भी एक काफ़ी चलन जड़ा सहारा इलाके में काफ़ी उन्नत किसान करा करते, पोलियो हाउस भी तो हाँ काम करा
1: हाँ
0: करते।
1: जी हाँ पोलियो हाउस लगाया था, लेकिन अजकल जो पोलियो हाउस की छत जी ऐसा मतलब टाइम आने दे
0: जी
1: निकली है, लेकिन उसके अंदर भी हाँ खेती बाड़ी करते उसका भी बहुत फायदा है,
0: अच्छा जी
1: बहुत मतलब सरकारी तरफा से मतलब बहुत ज़्यादा फायदा मिला, लेकिन जड़ा जो फायदा लेने वाले ना सह मतलब पैदावार बहुत ज़्यादा करा दे। पोलियो हाउस एक बड़ी अच्छी है क्योंकि हाँ मतलब बोलते कि सह गलान कितने ना कि 2 कदम अहाँ चल गए
0: जी
1: तो 10 कदम सरकार चलती हर
0: बिल्कुल
1: कदम, तो हाँ मैं बोलती कि इन चीज़ों से अगर हमारे बेरोजगार जो युवा पीढ़ी है
0: जी
1: इं मतलब तां बेहिया दे नशे च चली जा दे
0: जी
1: क्यों ना
0: जी
1: अपनी खेतियां करन, खेती करना अजकल आसान है मतलब सरकारी तरफ तो हरेक चीज़ मिला दी,
0: जी
1: लेकिन फायदे लेना चाहिए कने अहाँ लिया दे।
0: जी तो अच्छा है, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कई तरह के समूह जड़े साढ़े महिला समूह जड़े बना करते हैं, तो थोड़े ग्रां भी कोई समूह बने
1: देखा जी ये बड़ी अच्छी गल बोली तो हाँ कहना मुझे बड़ी खुशी हुई,
0: जी
1: मैं अपने ग्रुप का मतलब समूह का जिक्र करना चाहती।
0: जी
1: शुरू च क्या होया कि अहाँ खेती बाड़ी तो अहाँ कर दे है कि जमीन हांजल बथेरी है, तो इं होया कि मैं शुरू से तुम ये गल जी से दसना चाहती, अहाँ शुरू च हाड़े वाल कणक बड़ी ज़्यादा ही
0: जी
1: तो बड़ी ज़्यादा कणक रखी ने जिमदार जरा सह मतलब ढोरुआ लगी आंदा,
0: जी
1: ढोरुआ लगी आंदा तो अहाँ क्या किया कि अहाँ शीरा मतलब बखें मशीन थी बगलिए बाजारे कन्ने
0: जी
1: अहाँ सोचा कि हाँ शीरा बनाई लेंदे कुछ ना कुछ सेल होंगे,
0: जी
1: फिर जी अहाँ क्या किया शीरा बनाई लिया, तो एक माँ हाड़े वाले ब्याह वाले आए बोले कि तुम तो शीरा भाया था सांझो कुड़िए ब्याह शीरा चाहिए, तो सर तलू अहाँ पता क्या किया कि तिन्हें अहाँ शीरा तो देता पर तलू शीरे का रेट था 45 रुपये,
0: अच्छा जी
1: 45 रुपये तो सांझो मते लगे, कणक का रेट हाँ तलू 15 रुपये, तो 1 किलो कणक जरा 700 ग्राम शीरा निकलता।
0: अच्छा जी
1: अच्छा जी हाँ शीरा बनाना शुरू करे तो हाँ मतलब जी एक ब्याह वाले आए तीन अब देता दूए वाले आए तीन बोले कि तुम तो बड़िया भी पा करा तो हाँ जो बड़िया भी चाहिए,
0: जी
1: फिर हाँ बोले कि ठीक है तो जो बड़िया भी, फिर हाँ बड़िया पाना भी शुरू करती हाँ। एक दिन साढ़े ना मतलब ब्लॉक च पंचायत घर मीटिंग रखी हो,
0: जी
1: मीटिंग रखी हो तो मैडम आई होकर मैडम बोलिया कि इतू कोई शीरा तो नहीं पाता करी, मैं बोलिया कि मैडम जी अहाँ पाते, बोले तो हाँ पाते तो हाँ जो चाहिए बोलिया है, मतलब मैडम कितना चाहिए बोले हाँ जो चाहिए बोले 8-10 किलो, मतलब
0: जी
1: मैडम जी 8-10 तो नहीं है पर 3-4 किलो मिली आना
0: जी जी
1: तो सामा हाँ इं करा कि ऐ तो हाँ सांझो पाई दिया, मैं सीरे बनाने लगते 15-20 दिन,
0: जी
1: बोले ठीक है तो हाँ बनाई लिया कने अहाँ थोड़े ने बाद च मिल देना
0: जी
1: सर इं कि

0: कने तो सर से मेला लाना है। सर मैं बोलिया कि हाँ मेले माले च नहीं जाने वाली है ना, कने हम सीरा बनाई दी हैं, कने तो हाँ सीरा ले लेने हड़ते। तीन बोले अच्छा बनाता सही। अच्छा हाँ सर हाँ पता क्या कहता, हम बनाई लिया सीरा, सीरा तो बनाई लिया हाँ कोई भी 25 किलो, फिर जनानी हाँ 5-7 कट्ठियाँ होकर बनाई लिया सीरा, बनाया बढ़िया मेहनत ने राती दिन सू टाइम नहीं हों जनानियों हो, क्योंकि जनानियाँ अपने अपने कामों व्यस्त नहीं हैं। अहाँ क्या कहेंगे रोटी खानी कने राती 9 बजे सीरे दी पढ़ाइया लगी पौना, सीरा बना मतलब पीड़ना हाँ कने राती, कने राती गठी गुठी बननी है कि दुए दिन अहाँ सह कट्टनी है। कने सर है हाँ सीरा बनाई करी
1: जी
0: सैती नहीं हो हाँ मतलब ठीक है आई है सर से फेर। कने तीना बोलिया कि तुह आवा कने मेला लाना, मैं बोलिया कि अहाँ मेले च नहीं आ सकते, कने अहाँ जरा सह सीरा मतलब तुझे दे दिया। बोले ना ना तुह एक बारी आवा। तीन बड़ा फिर कंपेल किया, कने दो जनानियां जड़ियाँ सैती बैगे च पाया सीरा कने पैकिंग समझो कुछ पता नहीं, कने चली गई चली गई तू कने सह बड़ियाँ पाई लिया कने सीरा पाई लिया कने चली गई। कने सर गां तो मेला लग गया कि मैं तो दिखी कर रैन होइए कि बाकी आई बाहरली स्टेटा के लोग आई मेले लाना। कने मिंजो भी एक टेबल देता तीन छोटा दिया कने स्टॉले च लगाईता, कने एक जनानी जी सह गुरकड़िया की लगी तीन भी लगे हाँ
1: जी बिल्कुल, मतलब खेतीबाड़ी ते जड़ा भी समान तो हाँ बनाया सह तो वहाँ तो बेचने
0: लगी
1: ते।
0: था। हाँ जी। अच्छा सर बाकी तो गलत ठीक, लेकिन हाँ जो दुकानदारी है थोड़ी पता होंगे।
1: जी जी
0: सर सारा दिन हो गया कने मेरी बूनी नहीं लगी।
1: अच्छा जी
0: संजरा टाइम कने मैडम आखे बखे अंडा दी थी कने बखे वाली तेना समान बिकिया कने मेरिया बड़ियां का सह बड़ियां नहीं ना धुप लगी ही तो बड़ियां का कलर जो सा काला था।
1: जी जी
0: तो एक साहब जी आए तो तीना बोलिया कि ये बड़ियां कालियां तो ये आंवले बड़ियां लग गई मिंजू ये कह दी ने। मैं जी आंवले तो नहीं है ना पर यह मसालेदार बड़ियां ना।
1: जी
0: सर मसालेदार बोली ने तिना चिटियां बड़ियां रणातियां कने मेरे वाली बड़ियां खरीद लिया। सर मेरे वाली बड़ियां जड़ियाँ सह मेरा समान जो हम टेबले का सह ते हाथे पहले बिकी आ
1: अच्छा जी
0: कने मैं घरे चले आई।
1: जी जी
0: सर उसके बाद दुए दिन फिर हाँ समान घरे तो लेके गई
1: जी
0: पर पैकिंग नहीं ही सर। हाँ जी पैकिंग तो नहीं पता हाँ। फिर हाड़े वीडियो साहब थे तू मतलब दौरे पर आए आते फिरते आए तो ना देखा कि समान तो बहुत बढ़िया लेकिन पैकिंग तो बिल्कुल नहीं अच्छी है। सर तेना समझो ट्रेनिंग दी
1: अच्छा जी
0: उसके बाद मेले के बाद ट्रेनिंग दी लेडीज़ा तीन ट्रेनिंग ले हाँ लफाफे भी बना दी हाँ मतलब कैरी बैग भी बना दे
1: जी
0: हूँ जी महिला ने
1: जी
0: कने हाँ प्रिंट भी आपू ही कर दे।
1: अच्छा जी
0: हाँ जी तो मैं बोलती कि जेडे हाड़े ग्रुप हैं हाँ इतना फायदा लिया दे इन्हें ग्रुपा का पर लैने वाला है ना तो फायदा बड़ा ज़्यादा मिलता है।
1: मैं तुहाड़ी गल टोका करदा बई जड़ा सरकार द्वारा सहायता दिया करदी है ना ब्लॉक स्तर पर सांझो सहायता मिला करदी है इस ते जड़ा ऐसा महिला अपना उत्थान जड़ा सा करी सकदी है
0: हाँ जी
1: तां इस विच जियां तुसां दस्सा करदे बई और कौन कौन दियां तुहां फसलां जड़ियां सै इस दे माध्यम कन्नै बेचा करदे।
0: देखा जी हाँ हल्दी
1: अच्छा जी
0: हल्दी पाउडर जड़ा है सह हाड़ा बड़ा फिर बिकता
1: अच्छा जी
0: मूँह मंगी दाम ले लिया बेशक क्योंकि ऑरगेनिक है ना
1: जी
0: तो ऑरगेनिक चीज़ें अजकल बड़ी बड़ी बड़ी डिमांड है।
1: जी जी
0: दो यहाँ लाल चावल
1: अच्छा जी
0: सर लाल चावल दी बड़ी ज़्यादा डिमांड है अहाँ अपने खेतों चुगाते
1: अच्छा जी
0: कने अहाँ सारिया जनानियां बोली रहना कि मतलब जाए कि नहीं मतलब तो हाँ स्पैलर च ले आ कटोई लिया
1: जी
0: कने उसके बाद अं की जगह मतलब अहाँ खरीदी लेंदे तीनों तीनों पैसे दे देने अगे अहाँ जो जोड़ा दाम अहाँ मतलब अग लाना पैकिंग का भी हों सारा कुछ तो अहाँ तीन सेल करा दे। हाँ जो
1: अच्छा
0: डिमांड बड़ी ज़्यादा आँगी लाल धाना की। फिर एक
1: बिल्कुल
0: अलसी है सर
1: जी
0: अलसी हाँ अजकल सर्दियाँ सीजन लग गया अहाँ रोस्ट कर दे अजकल
1: जी
0: शीशियाँ च पैक है
1: जी
0: ये बड़ी ज़्यादा डिमांड है
1: जी
0: अहाँ अलसी भी बेच दे।
1: अच्छा जी
0: फिर डिमांड आँगी अलसी है लड्डू की अलसियाँ के लड्डू जोड़े हैं सर अजकल मतलब फेमस होंगे सर्दियों वास्ते
1: जी जी
0: तो अहाँ कुछ बे सेल कर चुके न
1: जी
0: कने काम जिहड़ा सै असीं लड़ूआं दा चले हाले तक।
1: तो यह भी तुहां इस टियाले दे माध्यम से दसा भी कल्ले हो अगर कोई हाड़ा किसान तुहाड़े दे इस लड्डूआं दा स्वाद लेना चाहता है तो सै कितने रुपए किलो तुहां लड्डू बेचा करते हैं।
0: सर गल ही है कि लड्डू आ ना बड़े महंगे
1: जी
0: तो लोगों मतलब रेट सुन के भी हसना भी
1: जी
0: कने क्योंकि इस होंगे ड्राई फ्रूट
1: जी
0: असली समान होंगे इस पे
1: जी जी
0: पिछली बार यहाँ 850
1: जी
0: इस बार 50 रुपये और बढ़ाई थी।
1: ठीक है जी
0: हाँ जी 900 रुपये
1: 900 रुपए किलो
0: नौ
1: जड़ा
0: सौ
1: सा
0: रुपये किलो है
1: तुहाड़े
0: लोग लेंदे सर
1: जी बिल्कुल देसी लड्डुआं दा स्वाद जड़ा
0: हाँ
1: सा
0: जी
1: ले सकदे हन
0: ले सकते। हाँ
1: तां
0: जी
1: इस विच समूह जड़ा सा तुहाडा बगली दा ही समूह है कने महिला ही है निश्चय।
0: ऐसा है जी हाड़ा एक समूह ते एक बीओ बनया हुंदा है
1: अच्छा जी
0: बीओ बीओ ते ऊपर क्लस्टर बने ते हाड़े हाड़ा जिहड़ा ब्रांड नेम नमस्ते धर्मशाला
1: अच्छा
0: जितने भी
1: जी
0: समूह हन अपना अपना समान बनांदे आमला कैंडी बनांदे सच्ची हाँ
1: अच्छा जी
0: सेमियां भी बनांदे आमला कैंडी बहुत ज़्यादा डिमांड है
1: अच्छा जी
0: क्योंकि असली चीज़ा ना ये।
1: जी जी
0: हाँ जी तो ये साढ़े हाल सेल करते तो हाड़ी धर्मशाला दुकान है डीसी ऑफिस दे मेन गेट पर
1: अच्छा जी
0: तो हाँ तिथु जाए कि ना ये समान जोड़ा सा बेच दे।
1: बिल्कुल तो दिखा जड़ा भी सहूलियत जड़ी साझो मिला करती है तिसते आदमी अपना किसान जड़ा सा ऊपर उठी सकता तो तिसदा जीता जागदा उदाहरण जड़ा सा तुहाड़ी शिव शक्ति सहायता समूह
0: जी
1: जड़ा बगली दा है
0: हाँ जी
1: सै साढ़े किसानों भी रस्ता जड़ा सा दसी सकता
0: बड़े मजे ने सर।
1: कने साड़ियाँ

0: कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा विपिन कुमार और कार्यक्रम प्रस्तुति जतेंद्र पाल सिंह। हुण अपने किसान साथी ग्राम सेवक जो
1: कने गुलाबो जो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पावन।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है,

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने व लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नौणी विश्वविद्यालय में की गई फीस वृद्धि को वापस लेने की सरकार से की मांग, कहा सुक्खू सरकार में समाज का हर वर्ग परेशान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल में इको फ्रेंडली व आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और भाजपा विधायक दल की बैठक कल शिमला में, मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति व अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर बल दिया है। शिमला में आज एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हर पेड़ हिमाचल का अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का बहुआयामी प्रयास है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपने शैक्षणिक जीवन के दौरान कम से कम एक पौधा लगाकर उसे पूर्ण विकसित वृक्ष बनने तक संरक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण व नशा मुक्ति अभियान के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनने का आह्वान करते हुए कहा कि ये दोनों संकल्प समाज को सशक्त बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिक चिकित्सा अवसंरचना व नवीनतम स्वास्थ्य तकनीक उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां करीब 158 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में जिले में सड़कों के निर्माण व विस्तार पर 591 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में अधिकारियों व कर्मचारियों का अहम योगदान रहता है। सोलन में आज कंडाघाट विकास खंड से नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के तहत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने कहा कि प्रत्येक परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निचार में 2,19,00,000 रुपए की लागत से निर्मित कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर में शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को घर द्वार पर गुणात्मक शिक्षा मिल सके। जगत सिंह नेगी ने कहा कि निचार, भावानगर, रिकांगपियो, सांगला और कानम सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक में की गई फीस वृद्धि को वापस लेने की राज्य सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस फीस वृद्धि से छात्र और उनके अभिभावक बेहद परेशान हैं। ऐसे में सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रवेश के समय अचानक फीस में लगभग 2 गुनी वृद्धि करना सामान्य परिवारों के छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुविधाएं छीनने और शुल्क बढ़ाने वाली कांग्रेस सरकार अब HRTC की बसों में मिल रही छूट पर भी कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार में प्रदेश की महिलाएं, छात्र, युवा, बीमार और बुजुर्ग सभी परेशान हैं। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज शिमला में बुलाई गई बैठक में 25 सदस्य जिला परिषद के एक भी निर्वाचित सदस्य के न पहुंचने से ये चुनाव फिलहाल टल गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि बैठक में किसी भी सदस्य के नहीं पहुंचने के कारण आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारणों की प्रशासन द्वारा जानकारी ली जाएगी और इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जल्द ही अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी।
1: आज की जो है वो बैठक निर्धारित की गई थी, उसमें कोई सदस्य भी उपस्थित नहीं हुआ है और हमारे जिला पंचायत अधिकारी इसकी हमें पूरी सूचना देंगे कि क्या कारण रहा कि क्यों कोई उपस्थित नहीं हुआ, उसके उपरांत हम इसकी अगली तिथि निश्चित करते हैं।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना डिपो की 5 इलेक्ट्रिक बसों को ऊना बस अड्डे से सांकेतिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें ऊना से डेरा बाबा रुद्रानंद धाम के लिए शुरू की गई नई इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शामिल है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में इको फ्रेंडली, आधुनिक व टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हरोली में प्रदेश के पहले ई बस डिपो से संचालन शुरू होने के बाद अब ऊना डिपो से भी ई बस सेवा आरंभ हो गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत ऊना जिला को 50, हमीरपुर को 35, बिलासपुर को 20 और देहरा को 10 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, आरामदायक व पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक कल शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होगी। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लगभग 4 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता लगातार निराश हुई है और सरकार ने विकास व सुशासन के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध, भ्रष्टाचार और जन विरोधी निर्णयों को प्राथमिकता दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में कौशल विकास से संबंधित विभिन्न ट्रेड आरंभ किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत जवाहरलाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लोहारब में आयोजित वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बाद में विक्रमादित्य सिंह ने नयासेर खड्ड पर लगभग 2,75,00,000 रुपए की लागत से निर्माणाधीन न्योहट नयासेर से देवीधार को जोड़ने वाले पुल का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां क्षेत्र में स्थित नौरा खेल मैदान में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना को स्थानीय लोगों ने आसपास उपलब्ध अन्य खाली भूमि पर स्थापित करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र का एकमात्र खेल मैदान सुरक्षित रह सके। स्वयंसेवी संस्था अवाम के लीगल एडवाइजर सौरभ कौंडल ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि नौरा खेल मैदान बचाओ अभियान के तहत 7 अगस्त को संस्था द्वारा एक रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कौंडल ने कहा कि ये मैदान आसपास के लगभग 6 गांवों के युवाओं के लिए खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है।

0: को खेल मैदान बचाओ नोरा बचाओ के नारे के साथ एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन कर रहे हैं। मैदान को बचाने के लिए हम इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार का एक विकास का कोई प्रोजेक्ट वहां पर लगाया जा रहा है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार के विकास के किसी भी प्रोजेक्ट के विरोधी नहीं है। हम ये चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार वहाँ प्रोजेक्ट लगाए। आज के समय में मैदानों की अहम भूमिका युवाओं को नशे से दूर रखने में रहती है।
1: प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 109 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जबकि 30 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने व लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नौणी विश्वविद्यालय में की गई फीस वृद्धि को वापिस लेने की सरकार से की मांग। कहा, सुक्खू सरकार में समाज का हर वर्ग परेशान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हिमाचल में इको फ्रेंडली व आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और भाजपा विधायक दल की बैठक कल शिमला में। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति व अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में मिशन शक्ति पालना योजना के अंतर्गत क्रेच केंद्रों में क्रेच कार्यकर्ताओं व क्रेच सहायकों के पदों को भरने हेतु बाल विकास परियोजना कुमार सेन के अंतर्गत क्रेच केंद्रों में क्रेच कार्यकर्ता का एक पद व क्रेच सहायिका के दो पदों को भरने हेतु केंद्र के फीडिंग एरिया व पंचायत स्तर के आधार पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पात्र आवेदकों से आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2026 पर, क्षमा कीजिएगा, दिनांक 22 अगस्त 2026 तक सादे कागज पर आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम पंपलाई। इस आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी क्रेच सहायिका का एक पद भरा जाना है। ग्राम पंचायत का नाम थानाधार। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम पलारन और पंपलाई। इन आंगनवाड़ी केंद्रों में क्रेच कार्य सहायिका और क्रेच कार्यकर्ता का पद भरा जाना है। इन पदों को भरने हेतु साक्षात्कार 24 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यता इस प्रकार से है। महिला संबंधित गांव फीडिंग एरिया की सामान्य निवासी होनी चाहिए। क्रेच कार्यकर्ता के लिए 10:2 और सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इन पदों को भरने हेतु आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आपको पुनः बता दें, इन पदों को भरने हेतु अंतिम तिथि 22

0: अगस्त 2026 निर्धारित की गई है और साक्षात्कार हेतु तिथि 24 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे स्थान कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सिंह जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सिंह जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के दूरभाष नंबर 2400049 पर। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।
2: लोकसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक

पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई की हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए

कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी

पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हरजीत हरमन के गाए इस पंजाबी गीत के साथ।

संगीत के विविध रूपों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग, और ये रही कार्यक्रम की अगली पेशकश।

संगीत के विविध रूपों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

श्रेया घोषाल के गाए इसी गीत के साथ विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

रहमान की आवाज़ में अभी आपने सुना स्वदेश फिल्म का गीत। लीजिए अब सुनिए सरपरोश फिल्म से ये देशभक्ति गीत, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम ने। जतिन ललित का संगीत निर्देशन और बोल हैं इसरार अंसारी के।

के साथ थे। आज का ये देशभक्ति कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
7: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में SS मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
9: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट।
10: जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर

0: एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
1: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए कुछ गीत।

3 अगस्त 1919 में जन्मे जयदेव वर्मा हिंदी फिल्म संगीत के सबसे प्रतिभाशाली और संवेदनशील संगीतकारों में गिने जाते हैं। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और गजल का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। वो कम फिल्मों में काम करने के बावजूद अपनी मधुर संगीत के कारण आज भी याद किए जाते हैं।

0: वे अभिनेता बनने के लिए मुंबई पहुंचे और बाल कलाकार के रूप में कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। बाद में उनका रुझान संगीत की ओर हुआ और उन्होंने कई मशहूर गीतों का संगीत दिया।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

कार्यक्रम है एक ही कलाकार और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए कुछ चुनिंदा नगमे और साथ ही साथ कुछ जानकारी भी साझा कर रहे हैं आपके साथ। जयदेव ने पहले संगीत सहायक रूप में काम किया और बाद में स्वतंत्र संगीतकार बने। उन्होंने हम दोनों, रेशमा और शेरा, घरोंदा, गमन कई फिल्मों में या

यादगार संगीत दिया और उनकी सरल धुनें मधुर और भावपूर्ण होती थी। बात करें उनके पुरस्कारों की तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें दिए गए, साथ ही सुर श्रृंगार पुरस्कार से भी वो सम्मानित हुए। शास्त्रीय संगीत पर उनकी गहरी पकड़ थी।

संगीतकार जयदेव वर्मा का संगीत बद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। इनकी शास्त्रीय संगीत पर गहरी पकड़ थी और

लहरू राम और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत प्रोमिला और सखियों का गाया हुआ।

गूंज पहाड़ों की। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। श्रोताओं, आपको एक जानकारी दे दें, आज है सोमवार और रात्रि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियोज का फोन नंबर है 01892224391।

राज प्रभाकर का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना, और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत महेंद्रु राम और साथियों का गाया हुआ।

महेंद्रुडाम और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।

0: सजीव फोनिन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा फिल्में जिनके गीत आप सुन सकते हैं। फिल्में हैं हमारे पास थ्री इडियट्स, आशिकी, अभिमान, एनिमल, बाजार, दबंग थ्री, एक फूल दो माली, कश्मीर की कली, राजा और रंक, बत्तीगुल, मीटर चालू, कबीर सिंह, दिल एक मंदिर, तुम बिन और तुमसे अच्छा कौन है। इन फिल्मों के गीत सुनने के लिए आप हमें कॉल कीजिए 01892224391 पर। हेलो
1: हेलो सीमा जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, आप आते नहीं कार्यक्रम में, क्या बात है। आप आते थे पहले, वो 12:30 बजे घर परिवार आता था ना पहले।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल। और चलिए, आज आपसे बात हो रही है, समझिए मुलाकात हो रही है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गाँव मेहतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में महेंद्र सिंह राणा जी। और बताएं कार्यक्रम में कॉल किया, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: बाजार फिल्म की गजल है, जो वो बहुत सुना दिए, बहुत मजेदार गजल है।
0: लेकिन फिल्में रखी हैं हमने, शायद आपने सुनी नहीं।
1: नहीं, आपने बाजार में उसमें
0: जी जी जी, जी जी बाजार।
1: हाँ जी
0: जी, बाजार का कौन सा बताया आपने?
1: जो पुरानी फिल्म है ना, उसमें गजल है ना, जो गजल।
0: नाम बताएंगे?
1: नाम मेरे को भूल गया अभी, नहीं तो अभिमान का सुना दिए, तेरे तुमसे है अब हमारी हम जिंदगी, वही वाला अमिताभ बच्चन और जया बादरी के ऊपर फिल्माया गया गाना है। जो भी आपको पसंद लगे वो सुना दीजिएगा
0: जी। चलिए, आपको सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म का गीत। और कार्यक्रम में कॉल की शुक्रिया, यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।
1: ठीक है सीमा जी, नमस्कार
0: जी, धन्यवाद जी।

हेलो हेलो जी, चलिए 0182-224391। स्टूडियोज का नंबर और इस पे कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: जी। स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या करते
1: जी। मैडम
0: हैं?
1: मैं एसटीसीएल में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ मैडम, और अभी ड्यूटी से घर आया हूँ 4 बजे करीब।
0: जी,
1: उसके बाद वही नहा धो कर खाना खा के आपके कई केंद्र में फोन किया, आपके केंद्र में भी फोन किया, लाइव में जुड़ा। तो बताइए आज के पिक्चर क्या है
0: जी। आज हमारे पास फिल्में हैं थ्री इडियट्स, आशिकी, अभिमान का हम सुनवा चुके, एनिमल, बत्तीगुल, मीटर चालू, बाजार, पुरानी वाली, दबंग 3, दिल एक मंदिर, एक फूल, दो माली, कबीर सिंह, कश्मीर की कली, राजा और रंक, तेरे नाम और तुमसे अच्छा कौन है, और साथ ही साथ है तुम बिन जी। हेलो। चलिए, इनसे लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, तो श्रोताओं से गुजारिश कि जब भी हमें कॉल करें सिग्नल का थोड़ा सा ध्यान रखें और सिग्नल में रहकर ही हमें कॉल करें। 01892224391 ये है हमारे स्टूडियोज़ का नंबर। और एक और कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी चलिए कोई बात नहीं, हमें है सभी श्रोताओं की कॉल्स का इंतज़ार, और इंतज़ार हुआ खत्म, एक कॉलर हमारे साथ हैं, चलिए बात करते हैं उनके साथ। हेलो
2: नमस्ते जी। उड़ीसा से बोलता हूँ, विजय महतो।
0: जी
2: उड़ीसा से बोलता हूँ, विजय महतो। जी
0: जी विजय माधव जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: जी बहुत दिन से ट्राई करते, आज यही लगा।
0: चलिए बहुत बधाई।

0: आपको, आपका कार्यक्रम में आपकी कॉल लग गई है। बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: हमको आशिकी फिल्म, आशिकी।
0: जी जी
1: आशिकी, उसका सब गाना हमको अच्छा लगता है, जो गाना चलेगा।
0: अच्छा, कोई सा भी गाना इसका सुनेंगे आप?
1: जी जी जी जी जी।
0: चलिए, आपको सुनवा रहे हैं आशिकी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।

0: हेलो जी,
1: छुट्टी करके इंद्रप्रांत सिंह बोल रहा हूँ और फिल्म का नाम बता रहे एक फूल दो माजी। वो गाना है ना, ये पर्दा हटा दो मोहम्मद रफी आशा भोसले, ये गीत उसमें।
0: जी गाना फिर से बोलेंगे, फिल्म तो हम समझ गए। और एक फूल दो माली
1: जो वो ये पर्दा हटा दो।
0: चलिए, इनकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है और श्रोताओं से गुजारिश की थोड़ा सा सिग्नल का ध्यान रखें। फिलहाल इनकी फरमाइश हम पूरा कर रहे हैं, ये पर्दा हटा दो।
2: ये पर

0: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं प्रोंजी डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव गट्टा से चांदरा बोल रहा हूँ मैडम जी।
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी।
1: जी कैसे हैं?
0: बढ़िया जी बढ़िया, बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं प्लेस आप जी।
1: जी धन्यवाद सर, और आपका संदेश सर तक पहुंच गया होगा। और बताएं, धर्मशाला के कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, से 1997 से जुड़ा हूँ जी।
1: चलिए बहुत बढ़िया, और रेडियो का साथ यूं ही बना रहे, आकाशवाणी धर्मशाला का साथ बना रहे यहीं।
0: मैडम एक छोटी सी शिकायत रहेगी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से।
1: जी बोलिए।
0: जैसे ना आपकी पसंद गीत हमारे और हेलो धर्मशाला जैसे कार्यक्रम होते हैं ना,
1: जी जी,
0: इसमें ना जो गीतों को थोड़ा कम करके सुनाए और श्रोताओं को ज्यादा जोड़े तो बड़ी खुशी की बात होगी।
1: लेकिन श्रोताओं को ये लगता है कि हमने गीत की फरमाइश की और गीत आधा ही चला।
0: जब वैसे पूरे दिन चलते रहते मैडम कार्यक्रम में गीत आते
1: लेकिन
0: ना, पूरे
1: उनकी पसंद को भी हमें ध्यान में रखना है, और आधा गाना चले तो शायद उनको अच्छा ना लगे। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे कि हमसे ज्यादा से ज्यादा श्रोता जो हैं वो जुड़ें। और बताएं आपको कौन सा गीत सुनवाएं आज?
0: जी वैसे मेरे को कुछ फिल्मों को नाम कुछ याद नहीं रहे, अभी मैं सुन रहा था कार्यक्रम आपका।
1: जी हमारे पास है 3 इडियट्स, एनिमल, बत्ती गुल मीटर चालू, बाजार, दबंग 3, दिल एक मंदिर। और
0: दिल एक मंदिर फिल्म का सुना दीजिए आप टाइटल सॉन्ग।
1: जी एक जी। बिल्कुल आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, और कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।
0: शुक्रिया मैडम, धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी मैं पॉल बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से।
0: जी तो आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: बिल्कुल जी, हम तो कभी मिस नहीं करते, लेकिन आपका फोन लाइन बहुत बिजी आता है तो फोन बड़ी मुश्किल से लगता है आपका।
0: जी ये श्रोताओं का प्यार ही है।
1: हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल श्रोताओं का प्यार है, इसीलिए तो आपका
0: बिल्कुल इसीलिए हमारी लाइन व्यस्त रहती है। चलिए आप बहुत खुशकिस्मत है, आपका नंबर या यूं कहें आपकी कॉल लग गई है ना। चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
1: गीत मैडम सुना दीजिए आप मुझे, क्या नाम, मेरे को भूल गया फिल्म का नाम, राजा और रंक का।
0: जी इसका कोई सा भी गीत सुनेंगे या कोई स्पेशल फरमाइश?
1: कोई सा भी गीत सुना दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो गीत सुना दीजिए। पर मेरे दोस्त है लोकेंद्र वर्मा जी, गुरमत राय, गौतम राय, त्रिपुरा से नाथ जी, एम पी से भगवान सिंह जी,
0: जी
1: और सभी हेलो फरमाइश श्रोता रेडियो तक सुनने वालों को ये डेलीगेट रहेगा
0: जी,
1: और रेशवर सोनू को भी रहेगा।
0: चलिए जी आपकी पसंद और यूं कहें हमारी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
1: मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: जी नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या करते हैं?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं
0: जी। और आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, बराबर जुड़े रहते हैं।
0: चलिए बहुत बढ़िया। और बताएं कार्यक्रम में आज कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: कश्मीर की कली से बचा है ना
0: जी,
1: तो उसी में से सुनवा देंगे
0: जी। इस फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कोई सा भी चल जाए।
0: चलिए आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: ये चांद सा रोशन चेहरा।

0: चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ कर।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं रेशमी कटोच गुलेरिया बोल रही हूँ, डांगियोल से।
1: जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बस हम आज आपकी पसंद का गाना सुनेंगे, पुराना ओल्ड गोल्ड।
1: ओल्ड गोल्ड तो मुझे लगता है अब समाप्ति की ही ओर है। और
2: चलो कोई बात नहीं, आपसे मुलाकात होगी, बात होगी।
1: चलिए, एक फिल्म अभी भी है हमारे पास, बाजार।
2: अच्छा
1: जी, इसका सुनवा दें आपको?
2: हाँ, इसका सुना दो, आप भी सुनिए साथ साथ।
1: बिल्कुल, हम तो सुन ही रहे हैं और साथ ही साथ आपसे बात हो रही है, साथ ही साथ गीत संगीत का सुहाना सा ये सफर है। और हमारे श्रोताओं की जब बात होती है तो ये सफर और भी सुहाना लगने लगता है।
2: थैंक यू सो मच। लास्ट गाना सुन रही, मैं टीवी में पुराने ही सुन रही, ब्लैक एंड व्हाइट।
1: चलिए, आपको सुनवा रहे हैं बाजार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।
2: थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।
1: जी जी।

0: गुप्ता सर जी।
1: जी नमस्कार।
0: मैं सतीश बात कर रहा हूँ फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मुझे गाना सुनवा दीजिए अपनी पसंद का कोई सा।
1: फिल्म भी नहीं बताएंगे आप?
0: फिल्म हमें क्या मालूम कौन सी है।
1: चलिए हम बता देते हैं। फिल्में अब है हमारे पास थ्री इडियट्स, एनिमल, बत्ती गुल मीटर चालू, दबंग थ्री, कबीर सिंह, तेरे नाम, तुम बिन और तुमसे अच्छा कौन है।
0: तेरे नाम का सुना दीजिए।
1: चलिए तेरे नाम का कोई सभी गीत सुनेंगे या कोई फरमाइश?
0: सुनवा सब गाना बढ़िया है
1: जी,
0: सब गाना बढ़िया सुना कोई सुनवा दीजिए।
1: चलिए आपको सुनवा रहे हैं तेरे नाम का ये टाइटल सॉन्ग। और कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।

0: हेलो
1: ओ?
0: हेलो जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, लोकेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आपका प्रोग्राम में प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ।

हेलो हेलो जी, हेलो जी, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं। मैम
0: जी, बाबू अंसारी जी, बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: जी, मैम फिल्म का नाम है, एक फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं।
0: ये फिल्म तो हमने रखी ही नहीं है। फिल्में आपको बता दें, अब है हमारे पास तुमसे अच्छा कौन है, तुम बिन, तेरे नाम, कबीर सिंह, तेरे नाम का तो अभी अभी आपने सुन लिया, कबीर सिंह, दबंग थ्री, बत्ती गुल, मीटर चालू, एनिमल और थ्री इडियट्स।
1: जी मैम, तुम साथ तुमसे अच्छा कौन फिल्म का सुनना चाहते हैं? मैम जी,
0: जी, इस फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: इस फिल्म का गीत है तुमसे अच्छा कौन सा टाइटल सॉन्ग सुना
0: जी,
1: दीजिए। मैम
0: टाइटल सॉन्ग आपको सुनवाते हैं और कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।

0: सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: मेरे भी हूँ तक फिल्में खत्म हो गई है, राजा रंक का।
0: जी अब तो हमारे पास बहुत कम फिल्में रह गई हैं, जल्दी से बताएं।
1: राजा और रंक का फिरकी वाली।
0: चलिए वो तो हम राजा और रंक का हम सुनवा चुके हैं, अभी हमारे पास है बत्ती गुल मीटर चालू।
1: एक फूल दो माली का
0: वो भी सुनवा चुके सर।
1: और कोई फिल्म बताओ पुरानी।
0: पुरानी तो अभी नहीं है, अब हमारे पास है तुम बिन, कबीर सिंह, दबंग 3 और बत्ती गुल मीटर चालू। जल्दी से बताएं, समय समाप्ति की ओर है।
1: किसी का सुना दो,
0: कोई भी,
1: कोई अपनी पसंद का सुना दो। हाँ जी
0: चलिए, आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत और
1: जी जी।
0: कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।
1: हाँ जी, टाइप ट्राई कर रहे थे, नंबर नहीं मिल रहा था।
0: कोई बात नहीं सर।

जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा ये सफ़र रहा आज के कार्यक्रम का। जी हाँ, पसंद आपकी गीत हमारे ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे, और अगले किसी कार्यक्रम में फिर से होगी आपसे मुलाकात कुछ नई बातों, कुछ नए तरानों के साथ। बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विपिन कुमार ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह।

इसी के साथ श्रोताओं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Indrajit